स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है सुबह सुबह, जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

साथ मजबूत संबंध बनाकर स्क्रैम्बल ने खुद को रोजगार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, मिलवाते हैं पश्ताना दुर्रानी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीते हुए कुछ दिनों पहले कातार की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के भविष्य पर एक सम्मेलन हुआ था। इस जल

से को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने काबुल के निजाम से जब ये कहा कि अपने देश में लड़कियों की तालीम और महिलाओं की नौकरी करने पर उसने जो अपमानजनक

खन्ना ने पश्ताना को प्रेरित किया कि उन सभी तमाम लड़कियों को वो डिजिटली पढ़ा सकती हैं जिनकी पहुंच में कोई स्कूल नहीं। इसी नेक इरादे से उन्होंने साल 2018 में लर्न अफगानिस्तान के नाम से एक निशुल्क ऑनलाइन स्कूल खोल दिया, अफगानिस्तान का पहला डिजिटल स्कूल नेटवर्क। इसके जरिए वो अब तक कंधार के 7,000 से ज्यादा लड़के लड़कियों को शिक्षित कर चुकी हैं और 80 शिक्षकों को भी डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। मगर पश्ताना का ये काम कभी निरापद नहीं रहा, क्योंकि कंधार से तालिबान कभी खत्म ही नहीं हुए थे। और फिर जब वो 21 साल की थी, उनके पिता का इंतकाल हो गया, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गईं। साल 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और तब स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बताया कि उनका कत्ल किया जा सकता है। पश्ताना ने अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला ले लिया और वो चली गई। इन दिनों वो वहीं से अपने मिशन में जुटी हैं। साल 2021 में बीबीसी की तरह प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ने भी उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों में गिना है। औरतों को अपने हक हुकूक के लिए हमेशा ही भारी संघर्ष करना पड़ता है। आज से 250 साल पहले भारत में सावित्री भाई फूले के साथ भी तो क्या क्या हुआ, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। मगर उन्होंने उस वक्त हमारे देश में स्त्री शिक्षा की जो ज्योत जलाई, उसे आज तक पूरा हिंदुस्तान रोशन है। उम्मीद है अफगानिस्तान की आने वाली नस्लें भी पश्ताना दुर्रानी को उसी अदब से याद करेंगी। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा, ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई। वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया, दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं, किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था, अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका। मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान, जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब। राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दोस्तों, किसी भी काम को करने का कोई एक तरीका नहीं होता। कई तरीके हो सकते हैं, घर सजाने का, खाना बनाने का, या कोई सामान बेचने का। कोई एक सबसे बढ़िया तरीका नहीं है, बहुत तरीके हो सकते हैं। आप जितने ज्यादा रचनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, उतने तरीके आपके पास होंगे। हम अपने दिमाग को बंद रखेंगे तो नए विचार कहां से आएंगे उसमें। तो बड़े बूढ़े कहते भी हैं ना, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखो। रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है पारंपरिक सोच। यानी कि अगर हम क्रिएटिव सोचना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, कुछ अलग हटके सोचना चाहते हैं, तो हमारी पुरानी सोच उसको रोकती है, हमें सोचने नहीं देती। इसलिए कई बार पुरानी सोच को हमें छोड़ना होगा। नए विचारों का स्वागत कीजिए, उनसे नफरत ना कीजिए। प्रयोगशील बनिए, यानी कि कुछ नया करके देखिए तो सही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो होंगे, और फेल हमेशा पास होने की पहली सीढ़ी होती है। याद कीजिए ना, बच्चा जब चलना शुरू करता है तो पहली बार वो गिरता है, फेल होता है, तब वो खड़ा होता है। हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप कितनी ही सुंदर कृति बना लें, उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तीन नियम जिंदगी को खूबसूरती से जीने के। नियम नंबर एक, आपका अपना दुख, दर्द या तकलीफ उतनी ही सच्ची है जितनी दूसरों की। हो सकता है कि कोई एक चीज किसी दूसरे के लिए आसान हो, लेकिन इससे आपका दर्द कम नहीं हो जाता। अपने दर्द के बारे में बात करना, उसको ठीक करना आपका हक है। आपका दर्द मायने रखता है, आपका अनुभव मायने रखता है, आपका उबर कर आगे बढ़ना भी जायज है। नियम नंबर दो, कोई एक दिन ऐसा होता है जब दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। होता है ना ऐसा। मुश्किल समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है छोड़ना। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। शांति की सांस लेते हुए हम अपने भीतर के गुबार को छोड़ने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। हम छोड़ दें उस विचार को जो भीतर अवसाद भरे जा रहा है। जाने देना यानी जो हुआ उसे मानते हुए आगे बढ़ जाना, भले ही उसके लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े, लेकिन उसे छोड़ना ही होगा। नियम नंबर तीन, जिंदगी के संघर्ष समझ नहीं आते, लेकिन उसके मायने होते तो हैं। जब कभी हम अपने बीते कठिन दिनों को देखते हैं, उस वक्त ये समझ में आता है कि उनके कारण ही हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। तब हम अपने संघर्षों को सलाम करते हैं। चुनौतियां केवल तोड़ती नहीं है, हमें मजबूत भी बनाती हैं। निरंतर किए गए प्रयास और संघर्ष से ही ताकत और तरक्की मिलती तो है। फिर मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, इस स्नेह की एक लघु कथा सुनाता हूं, एक छोटी सी कहानी जो सुकेश साहनी साहब ने लिखी है, धुएं की दीवार। बंटवारे से पहले इन दोनों भाइयों अमीचंद और दुलीचंद में बहुत प्यार था, उनके परिवार में भी। आज बंटवारे के बाद जब उनके मकान के बीच में एक दीवार खींच दी गई, तब अमीचंद शीशे के सामने खड़ा होकर पगड़ी बांध रहा था। बंटवारे के बाद वो पहली बार बाजार जा रहा था, लेकिन उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। पहले हर महीने वो बेले वाला के हाट में बाजार में जाकर सबके लिए जरूरी सामान लाया करता था, दुलीचंद और उसके बच्चों के लिए भी लाता था। उसने खिड़की के बाहर एक उदास सी निगाह डाली। अपने मकान की दो हिस्सों में बांटती हुई दीवार उसके दिल को चीरती चली गई। बंटवारे वाले दिन से उसके और छोटे भाई दुलीचंद के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद थी। बाहर दुलीचंद श्यामा गाय को दोहने की तैयारी कर रहा था। बंटवारे में गाय उसके हिस्से में आई थी। अभी अमीचंद की नजर अपनी बेटी पर पड़ गई। वो हाथ में बड़ा सा गिलास लिए चुपके से अपने चाचा की ओर बढ़ रही थी। वो चिल्लाकर बेटी को रोकना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दुलीचंद ने मुस्कुराकर अपनी भतीजी की तरफ देखा। जवाब में वो भी धीरे से हंस दी। दुलीचंद ने उसके हाथ से गिलास ले लिया और झटपट उसमें दूध डाल दिया। अमीचंद एक टक इस दृश्य को देख रहा था। ठीक उसी समय दुलीचंद की पत्नी भी घर से निकली। अब अमीचंद को पूरा विश्वास हो गया कि बहू उसकी बेटी के हाथ से दूध भरा गिलास छीनकर फेंक देगी और ना जाने क्या क्या बकेगी। बंटवारे के समय भी उसने बहुत झगड़ा किया था। अमीचंद लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि बहू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, और कहीं पति दुलीचंद उसे देख ना ले, वो डर से तुरंत भीतर भाग गई। अमीचंद की बेटी ने एक सांस में ही दूध का गिलास खाली कर दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ी। अमीचंद की आंखें भर आईं। उसको लगा घर के बीच की दीवार गायब हो गई। अमीचंद घर से बाहर आया

लीजिए दोस्तों, एक और बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त ये थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो ये गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए थी। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया था, मिठाई और अलग अलग तरह के पकवान भी बनाए थे। पहले सभी दावत का आनंद लेते थे, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता था। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिसमें राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए इस चक्कर में। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती ही होती है, ये राजकुमारी तो पागल हो गई है, ये केवल हमको सबको पिटवाने का मजा लूटना चाहती है और कुछ नहीं। ये नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लग गया। उसने कहा, अरे डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती तक नहीं आती। अब ये सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। और राजा ने उससे पूछा, अच्छा जी, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुना दो। हलवाई बोला, राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं तो आप लोगों के बराबर नहीं हूं, और स्वयंवर में तो सिर्फ राजाओं को ही बुलाया गया है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? पास खड़ी हुई राजकुमारी बोल पड़ी, अच्छा जी, चलो ठीक है, अगर तुमने गिनती सुना दी तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और अगर नहीं सुना पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, कोड़े नहीं। सब ये देखते ही रह गए कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कह दिया गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। दोस्तों गौर कीजिएगा, अब यहां एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोक, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, सात वार, आठ खंड, नौ ग्रह, दस दिशाएं, ग्यारह रुद्र, बारह महीने, तेरह रत्न, चौदह विद्याएं, पंद्रह तिथि, सोलह श्राद्ध, सत्रह वनस्पति, अठारह पुराण, उन्नीसवीं तुम और बीसवा मैं। सब लोग हक्के पक्के रह गए। राजकुमारी ने हलवाई से शादी की। दोस्तों इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। यहां शिक्षा से बड़ा तजर्बा निकला। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जब सपना जिद बन जाए, एक कहानी जिसने दुनिया बदल दी। स्वागत है आपका दोस्तों एक और नई कहानी में। आज की कहानी सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, आज की कहानी है जुनून की, जिद की, और एक ऐसे इंसान की जिसे सबने मना किया लेकिन उसने खुद को कभी मना नहीं किया। चलिए आपको लेके चलते हैं थोड़ा पीछे। एक आदमी था, सपना था फिल्म बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम, उसे फिल्म मेकिंग आती नहीं थी, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, स्क्रिप्ट वो भी नहीं, बस कुछ स्केचेस, कुछ ड्राइंग्स, मतलब आज की लैंग्वेज में बोले तो विजन तो था लेकिन सिस्टम नहीं था। अब आप सोचिए, आजकल भी लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है तो काम कैसे मिलेगा, और यहां बिना एक्सपीरियंस के एक बंदा फिल्म बनाने निकला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने डिसाइड किया इस फिल्म में ना गाने होंगे, ना फाइट्स होंगी, ना रोमांस होगा। अब इंडियन सिनेमा का बेसिक फॉर्मूला क्या है हम सब जानते हैं, थोड़ा प्यार, थोड़ी मार, थोड़ा डांस। यहां ये सब कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये आज का रिस्क नहीं था, ये उस जमाने का रिस्क था जब लोग एक्सपेरिमेंट से डरते थे। और फिर कास्टिंग की बारी आई, आप एक्सपेक्ट करेंगे बिग स्टार्स, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, एमेच्योर एक्टर्स लिए, कुछ थिएटर वाले और एक फिल्म लीड, सब रेडी हो गए। वो उनसे मिला पड़ोसी की छत पर। जी हाँ, बंदा कैजुअली छत पर दिखा और ये फिल्म मेकर बोला ये परफेक्ट है। अगर आज होता तो लोग बोलते इंस्टाग्राम हैंडल क्या है इसका, कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ आंखों से टैलेंट पहचाना जाता था। और एक रूल, सेट पर कोई मेकअप नहीं करेगा। अब एक्टर्स सोच रहे होंगे हम आए क्यों हैं, लेकिन उसका विजन क्लियर था, रियल लोग, रियल इमोशंस, रियल कहानी। और शूटिंग स्टूडियो में नहीं, आउटडोर रियल लोकेशंस पर। उस जमाने में ये ऑलमोस्ट एक रिबेलियन जैसा था, एक रेवोल्यूशन जैसा था। और सिनेमाटोग्राफर, कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं, 21 साल का एक स्टिल फोटोग्राफर जिसे फिल्म कैमरा चलाना भी नहीं आता था। तो दोस्तों अब आप ऑनेस्टली बताओ, अगर आप उस टाइम पे होते तो क्या बोलते, ये तो पक्का फ्लॉप है, यही ना? और वही सबने बोला, ये डिजास्टर है, ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, ये सपना टूट जाएगा। लेकिन सपना जब जिद बन जाए ना, तो दुनिया की आवाज धीमी पड़ जाती है दोस्तों। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पैसे। कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई फंडिंग नहीं, लेकिन सपना, सपना तो जिंदा है। तो उसने क्या किया, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया और शूटिंग शुरू की। थोड़ा शूट हुआ, पैसे खत्म, अब क्या करते, छोड़ दो। नहीं, उसने नहीं छोड़ा, अपना ग्रामोफोन रिकॉर्ड कलेक्शन बेच दिया। सोचिए आपकी फेवरेट चीजें, आपका पैशन,
सब बेचकर सिर्फ एक सपने के लिए आप चलते जा रहे हैं, फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म। अब तो बस हो गया ना, आपको यही लगेगा, लेकिन नहीं, यहां कहानी और फिल्मी हो जाती है। उसने अपनी वाइफ के गहने तक गिरवी रख दिए। ये सिर्फ लाइफ स्ट्रगल नहीं है दोस्तों, ये सैक्रिफाइस है। और ये सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का सपना बन चुका था। फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म, और इस बार सब रुक गया। एक साल तक कुछ नहीं, कोई होप नहीं, कोई पैसा नहीं, बस एक अधूरी फिल्म। और एक आदमी जो शायद थोड़ा थक गया था, लेकिन रुका फिर भी नहीं। जिंदगी का सबसे टफ फेज कौन सा होता है आप जानते हैं? आप सब सोच रहे होंगे जब आप फेल हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, जब आप वेट करते रहते हो और फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता, वो एक साल सिर्फ इंतजार था। और फिर एक मिरेकल हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग दी। लेकिन ट्विस्ट सुनो, उन्हें लगा ये फिल्म नहीं एक डॉक्यूमेंट्री है रूरल डेवलपमेंट पर, क्योंकि टाइटल ऐसा लग रहा था। दोस्तों, कभी कभी लोग गलत समझकर भी सही काम कर ही देते हैं, और इस बार उस गलत समझ ने एक मास्टरपीस को जन्म दिया। फिल्म कंप्लीट हुई, 3 साल लगे, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, डाउट, सब कुछ था। और फिर रिलीज हुई पाथेर पंचाली। इस फिल्म के क्रिएटर, खैर नाम की जरूरत नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं, द ग्रेट सत्यजीत रे। दोस्तों, रिलीज के बाद क्या हुआ? लोग चुप हो गए, क्रिटिक्स हैरान हो गए, और दुनिया ने कहा ये जीनियस है। जो लोग बोल रहे थे डिजास्टर है, वही लोग बोलने लगे मास्टरपीस है। दोस्तों, डिफरेंस क्या था? फिल्म नहीं बदली, लोगों की नजर बदल गई। और आज की सबसे बड़ी बात, अगर सत्यजीत रे ने हार मान ली होती ना, तो क्या होता? ना ये फिल्म होती, ना ये कहानी होती, और ना ही दुनिया को पता चलता कि असली सिनेमा क्या होता है। दोस्तों, हर किसी के पास एक पाथेर पंचाली होती है, एक सपना जो थोड़ा अलग होता है, जिसे लोग समझते नहीं, जिसे लोग रिस्की भी कहते हैं। आजकल हम सब क्या करते हैं? आइडिया आया, गूगल किया, इज दिस अ गुड आइडिया? दो लोग बोलते हैं नो, और हम बोलते हैं छोड़ो यार, कौन चलेगा इस पे आगे। अगर रे सर भी गूगल करते तो क्या होता? आंसर आता हाईली रिस्की, नॉट रिकमेंडेड, और कहानी वहीं खत्म। लेकिन आज की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि सपने परफेक्ट नहीं होते, कंडीशंस भी परफेक्ट नहीं होती, और लोग भी कई बार आपको सपोर्ट नहीं करते। सब जगह से नॉन रेकमेंडेशन का ही कमेंट आता है। लेकिन अगर आप रुकते नहीं, अगर आप कन्विंस्ड हैं, तो कहानी बन जाती है, मिसालें बन जाती हैं, और हिस्ट्री क्रिएट होती है। इसी के साथ ये आज की इंस्पायरिंग फिल्मी और यादों से जुड़ी कहानी यहीं समाप्त करते हैं। सपने देखते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, जिद अगर सच्ची हो तो कहानी दुनिया लिखती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हर चीज का जुगाड़ एक्सपर्ट। ये बंदा बोलता है तू टेंशन मत ले, जुगाड़ हो जाएगा। और लास्ट में जुगाड़ ये होता है, चल कल देखते हैं।

एक आवाज जो पर्दे के पीछे थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। आज हम आवाजों की कहानी सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक आवाज है और फिर एक और आवाज है और फिर एक तीसरी आवाज है। अब मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गाना हम सुनते हैं उसके पीछे कितनी कहानियां होती हैं? क्योंकि दोस्तों, हर सुर के पीछे एक स्ट्रगल होता है, एक कहानी होती है, एक इंसान होता है। आज की कहानी भी ऐसी एक आवाज से शुरू होती है। एक ऐसा वक्त था जब फिल्म्स में एक्टर्स खुद गाते थे। जी हां, ना कोई प्लेबैक सिंगर, ना कोई रिकॉर्डिंग मैजिक, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही गा रहा है। और उस जमाने में एक नाम था, अशोक कुमार। उन्होंने कई गाने गाए और फिर उन्हीं गानों को एक और आवाज ने अमर कर दिया। कौन? द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स, किशोर कुमार।

0: बार। उनकी आवाज, उनका अंदाज आज भी दिल को छू जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी ना अशोक कुमार की है ना किशोर कुमार की। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने इन आवाजों को जन्म दिया। एक कंपोजर, एक क्रिएटर, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक पायनियर। उनका नाम था सरस्वती देवी, लेकिन ये नाम उन्हें दिया गया था। उनका असली नाम था खुर्शीद मिनोचर होमजी। और दोस्तों, यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक डिसीजन जो बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें हायर किया गया था बॉम्बे टॉकीज ने, उस जमाने का एक बहुत बड़ा स्टूडियो। एक सपना, एक मौका। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी। और सिर्फ औरत नहीं, एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में आना एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता था। बोर्ड मेंबर्स ने कहा, ये ठीक नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, ये काम उनके लिए नहीं है। दोस्तों सोचिए, टैलेंट होने के बाद भी सिर्फ इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि आप एक औरत हो और आपका सरनेम मैच नहीं कर रहा। लेकिन हर कहानी में एक इंसान होता है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है, और यहां भी वही हुआ। यहां वो इंसान थे हिमांशु रॉय। उन्होंने कहा, नहीं, यही हायर होंगी। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और क्लियर विजन, लेकिन एक कंडीशन के साथ, नाम बदलना पड़ेगा। और खुर्शीद बन गई सरस्वती देवी। दोस्तों, ये सिर्फ नाम चेंज नहीं था, ये एक आइडेंटिटी का कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन कभी कभी अंदर का जुनून बाहर के नाम से बहुत बड़ा होता है। और इस तरह सरस्वती देवी बनी इंडिया की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर। दोस्तों, आज जब हम फीमेल कंपोजर्स की बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल बात लगती है, लेकिन उस वक्त ये रेवोल्यूशन था। कुछ सालों बाद एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। लीड एक्ट्रेस बीमार थी, उन्हें जोर की खांसी थी और वो गाना नहीं गा पा रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म रुक नहीं सकती थी, टाइम नहीं है। सॉल्यूशन क्या करें, क्या करें, क्या करें? दोस्तों, यहीं से आता है एक ऐसा मोमेंट जिसने सिनेमा की हिस्ट्री बदल दी। हिमांशु राय ने कहा, एक काम करते हैं, गाना कोई और गाएगा, एक्ट्रेस सिर्फ लिप सिंक करेगी। और गाएगा कौन? सरस्वती देवी। पर्दे के पीछे से वो गाती रही और स्टेज पर एक्ट्रेस उस आवाज को जीती रही। दोस्तों, ये था इंडिया का पहला प्लेबैक सिंगिंग मोमेंट। सोचिए, आज हम जितने भी गाने सुनते हैं, लता मंगेशकर जी से लेकर किशोर कुमार जी से लेकर रफी साहब से लेकर अरिजीत सिंह तक, सबकी फाउंडेशन उस एक मोमेंट ने डिफाइन की। कितनी अजीब बात है ना, आवाज उनकी लेकिन चेहरा किसी और का, टैलेंट उनका लेकिन क्रेडिट हमेशा सामने वाले को मिलता। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने बस क्रिएट करना कंटिन्यू रखा। और दोस्तों, यही असली ग्रेटनेस होती है। जिंदगी में कई लोग होते हैं जो फ्रंट में नहीं होते, स्पॉटलाइट में भी नहीं होते, लेकिन उनके बिना कहानी अधूरी होती है। जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक राइटर, एक टेक्नीशियन, और कभी कभी एक आवाज जो पर्दे के पीछे होती है। आजकल क्या होता है, रील बनानी है तो पहले कैमरा सेट, फिर लाइटिंग, फिर फिल्टर, फिर कैप्शन, जस्ट बीइंग नेचुरल। और उस जमाने में ना फिल्टर ना ऑटोट्यून, सिर्फ प्योर अनफिल्टर्ड टैलेंट। दोस्तों, आज जब आप कोई गाना सुनो ना, तो सिर्फ सिंगर को याद मत करना, थोड़ा सा रुक कर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है, किसने कंपोज किया, किसने चांस दिया, किसने रिस्क लिया, और किसने पर्दे के पीछे रहकर हिस्ट्री लिख दी। क्योंकि हर आवाज जो सुनाई देती है ना, उसके पीछे एक और आवाज होती है जो कभी सुनाई नहीं देती, बट जिसके बिना वो कहानी अधूरी होती है, वो आवाज अधूरी होती है। इसी के साथ आज का ये सोलफुल म्यूजिकल और दिल को छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली स्टोरी तक के लिए गाने सुनते रहिए, गुनगुनाते भी रहिए और महसूस भी करते रहिए।
1: ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी, कभी पहन लेता हूं कभी उतार देता हूं, बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं, जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा, जो याद रहेगा सिर्फ इतना।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन एक्टिव, रिप्लाई इनएक्टिव। ऑनलाइन ग्रीन डॉट फुल ऑन है पर रिप्लाई जीरो। ऐसे लोग मैसेज नहीं पढ़ते, सोच के रिप्लाई डिले करते हैं।

पादुकों ने। नाम सुनते ही एक ही कहानी, एक ही चेहरा सामने आता है। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूं, अगर मैं बोलूं पादुकों ने तो आपके दिमाग में कौन आता है? जी हां, मुझे पता है आप सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, दीपिका पादुकों ने, द ग्रेसफुल ब्यूटिफुल सुपरस्टार। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी उनकी नहीं, आज की कहानी है एक और पादुकोने की, जो स्क्रीन पर कम दिखे लेकिन सिनेमा के दिल में हमेशा बस गए। एक ऐसा नाम, गुरुदत्त, जिनका असली नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोने। और बिलीव कीजिए, इनकी कहानी इतनी फिल्मी है कि अगर कोई उसे लिखता और उस पे फिल्म बनती तो लोग कहते ओवर फिल्मीनेस हो गई भाई। लेकिन ये सब कहानी नहीं, उनका जिया हुआ सच है। सीन वन, एक अजीब सी मुलाकात। सोचिए, एक फिल्म सेट है, दो यंग लड़के, दोनों नए, एक एक्टर दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर, दोनों पहली बार मिल रहे हैं, एकदम फॉर्मल सी बात हो रही है, हेलो हाय कैसे हो, द फॉर्मल एक्सचेंज। और फिर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो दोनों एक साथ रुकते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक साथ एक दूसरे की शर्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। क्यों? धोबी ने कपड़े उल्टे दे दिए थे, उनकी शर्ट्स एक्सचेंज हो गई थी और बस दोनों हंस पड़े, ऐसे हंस पड़े कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन फ्रेंडशिप में बदल गई और फिर एक प्यारा सा हग। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स इतनी सिंपल गलतियों से शुरू होती हैं। एक प्रॉमिस जो हिस्ट्री बन गया, उसी दिन दोनों ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया। एक्टर बोला, कल को अगर मैं प्रोड्यूसर बना तो तुझे डायरेक्टर बनाऊंगा, और असिस्टेंट डायरेक्टर बोला, कल को अगर मुझे डायरेक्शन मिला तो मेरी पहली फिल्म का हीरो तू होगा। अब ऑनेस्टली बताओ, ऐसे प्रॉमिसेस हम सब करते हैं, भाई तू सेटल हो जा फिर देख, कल को बड़ा आदमी बनना याद रखना, लेकिन कितने लोग निभाते हैं? दोस्तों, इन दोनों ने ये प्रॉमिस निभाया, और वो एक्टर कौन था? गेस कीजिए, सोचिए सोचिए, द ग्रेट देवानंद। और वो असिस्टेंट डायरेक्टर कौन था? खैर, इसमें कोई गैसेस नहीं, हमारे अपने द ग्रेटेस्ट गुरुदत्त साहब, और उनकी फिल्म बाजी। और रिजल्ट ऑफ कोर्स एक ब्लॉकबस्टर, देवानंद सुपरस्टार बन गए और गुरुदत्त एक लेजेंड बनने की राह पर चल पड़े।

मैजिक ऑफ टीम वर्क इसे कहते हैं दोस्तों। गुरुदत्त सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, वो एक आर्टिस्ट थे जो लोगों को पहचानते थे, टैलेंट को समझते थे और फिर एक ड्रीम टीम बनाते थे। एक दिन शूटिंग चल रही थी, एक सीन था और गुरुदत्त को वो पसंद नहीं आ रहा था। वो डिस्कशन कर रहे थे, ये सीन वीक है, प्रॉब्लम्स हैं, खराब है, सही नहीं जा रहा। तभी एक यंग लड़का जो बस सेट पर था आगे आता है और बिना परमिशन अपनी बात बोल देता है। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में नॉर्मली क्या होता है हम सब जानते हैं, कौन हो तुम भाई, चुप रहो। लेकिन गुरुदत्त ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सुना और सिर्फ सुना ही नहीं, समझा। और वो तुरंत बोले, तुम मेरी नेक्स्ट फिल्म लिखोगे। वो लड़का था अबरार अलवी। और फिर जो फिल्म्स आई वो हम सब जानते हैं कि सिनेमा के आर्काइव्स की जेम्स थी और आज भी हैं। प्यासा, कागज के फूल, चौदवी का चांद और साहेब बीवी और गुलाम। दोस्तों ये सिर्फ फिल्म्स नहीं, जैसे मैंने कहा ये इमोशंस हैं, क्लासिक्स हैं, हिस्ट्री है। अब सुनते हैं एक और कमाल की पार्टनरशिप के बारे में, वीके मूर्ति जी, एक यंग सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने एक टेक्निकल शॉट सजेस्ट किया और उसे एक ही टेक में परफेक्ट कर दिया। गुरुदत्त बहुत इंप्रेस हुए और फिर हिस्ट्री बन गई। दोनों ने मिलकर इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक विजुअल्स क्रिएट किए, जैसे वो सनबीम शॉट, जी हां कागज के फूल का वो लेजेंडरी क्लाइमैक्स, प्यासा जहां गुरुदत्त की सिलहूट लाइट के अगेंस्ट होती है, एक सिंबल बन जाती है, एक फीलिंग बन जाती है। दोस्तों ये सिर्फ शूटिंग नहीं थी, ये पेंटिंग्स थी रोशनी और अंधेरे की, ब्लैक एंड व्हाइट का जादू। आज हम कलर सिनेमा के आदि हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में इतनी गहराई से क्रिएट करना, वो आर्ट था, लाइट और शैडो का खेल था, इमोशंस को बिना डायलॉग के दिखाना, ये सब गुरुदत्त और उनकी टीम ने मास्टर किया। ये कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर की नहीं है, ये कहानी है उन दोस्तियों की, उन ट्रस्ट की और उन टैलेंट्स को पहचानने की। एक धोबी की गलती, एक छत पर मिलना, एक अननोन राइटर की हिम्मत और एक सिनेमाटोग्राफर का आइडिया। एक इंसान जो सबको चांस देता गया और एंड रिजल्ट लेजेंडरी। आजकल हम क्या करते हैं, रेज्यूम चेक करते हैं, एक्सपीरियंस चेक करते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं और फिर बोलते हैं देखेंगे, अभी वैकेंसी नहीं है। गुरुदत्त क्या करते थे, टैलेंट देखा और सीधा चांस दे दिया। अब जब आप पादुकोने सुनो तो सिर्फ एक नाम याद मत कीजिएगा, एक कहानी याद करिएगा, एक जर्नी याद करिएगा और एक इंसान को याद करिएगा जिन्होंने सिनेमा को फील करना सिखाया। मैं हूं आपकी दोस्त और अगली कहानी तक के लिए अपने आसपास के लोगों को देखिए, हो सकता है आपके पास भी कोई नेक्स्ट गुरुदत्त हो, बस आपको पहचानने की देर है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: एक बार और सोने वाला, अलार्म बजता है उठता नहीं, दूसरा अलार्म इग्नोर, तीसरे अलार्म के बाद बस 5 मिनट और वो 5 मिनट सीधा 1 घंटा बन जाता है।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: टम्पोट।
1: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझा कर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: कोयले की कहानी।
2: दोस्तों जरा पहचानिए तो, ये आवाज किसकी है? पहचानिए पहचानिए। ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, झाबुआ की आवाज।
1: चरवाहा।

0: अरे किशन, किशन बेटा कहाँ है तू?
1: क्या है काका?
0: आज पाठशाला नहीं जाना?
1: है काका, आज तो रविवार है।
0: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन, तू जा, आज तू ही पशु चरा ला।
1: काका, मुझे तो आज पाठ याद करना है।
0: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
1: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
0: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले, पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने। और हाँ, ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
1: अच्छा,
0: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
1: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
0: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
1: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
2: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
3: अरे ओ शंभू, ओ शंभू, किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हिया, हप हप हप, चला चला चला है।
4: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
5: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
6: सोने भी नहीं देता।
4: अरे शंभू, तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
4: अरे शंभू, कैसा आदमी है रे तू?
5: क्यों परेशान कर रहा है, चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
4: अरे इतने सारे पशु, मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देखना किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
5: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है?
7: मेरी समझ में नहीं आ रहा।
4: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं।
5: ओफो,
4: तब तेरी समझ में आएगा।
5: अच्छा जा जा जा जा, जा।
7: मुझे सोने दे।
4: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
2: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
3: चलो चलो चलो
8: किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
4: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
8: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं? किसने किया ये सब?
4: वो काका शंभू है ना, उसके पशु खेत में घुसाए थे।
8: और शंभू कहाँ था?
4: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
8: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
4: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
8: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
4: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
8: इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
4: मेरे पास लाठी है ना,
8: हाँ।
4: इसी से, और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।
8: बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूं। चलो।
4: चलिए काका, चल शेरू, आ।
2: मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था।
8: शंभू! अरे ओ शंभू!
3: अरे ओ शंभू!
5: अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया? सोने नहीं देता।
3: क्या है?
8: सोने नहीं देता, तुझे मैं सुलाता हूं। उठ और चलकर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है।
5: आप मुखिया साहब, आपके खेत किसने उजाड़े?
8: मुझसे पूछ रहा है। तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत।
5: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे। किसी और के पशु घुसे होंगे।
3: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: तू चुप रह। तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
8: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे?
5: लेकिन वो मेरे पशु कहाँ हैं?
8: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
5: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
8: अच्छा चल जा और देख,
5: हाँ?
8: आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना।
5: जी।
8: किसी और के खेत में ना घुसे।
5: जी।
8: आज तुझे छोड़ रहा हूँ।
5: जी।
8: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
5: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
8: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
4: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु वो देखिए, ओ दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
8: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
4: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू, आ।
2: किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले,
0: मेरा किशन बड़ी काम का है, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे की खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश।
4: काका।
0: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
4: अच्छा काका, चल शेरू आ।
9: आ, आ, आ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 10 के अभिल 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
2: तो सुविचार है,
1: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
2: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
1: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओं, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ बहुत सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
2: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
1: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
2: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
1: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
2: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
1: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
2: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
1: मैं कानाराम चौहान, गाँव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए CIET NCERT का धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, जो कानाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
1: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
2: जगह,
1: जिला और
2: राज्य।
1: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
2: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
1: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
3: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलिपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलिपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में हाथ मचौली खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर

0: मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए।
1: ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा।
0: मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया।
1: राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े।
0: मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था।

0: मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।
0: अरे तुम्हें क्या हुआ?
2: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
0: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
2: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ओह, ये सपना था। पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल।

ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन ण शब्द के बीच में या आखिरी में आता है, जैसे बाण।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे प्रवीण कुमार सोनी और आप है मेरे साथ रेडियो 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बालिका एवं महिलाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम, नारी सम्मान अभिमन्यु अभियान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विकसित व सुरक्षित समाज का निर्माण महिला एवं पुरुषों की समान सहभागिता से ही किया जा सकता है। अतः महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि समाज में बालकों एवं पुरुषों को न केवल महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक किया जाए, बल्कि उन्हें संवेदनशील बनाकर पूर्वाग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित किया जाए। आज बच्चों एवं महिलाओं पर घटित अपराधों को देखते हुए अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेषकर पुरुषों को जागरूक करने हेतु पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अभिमन्यु अभियान। ये अभिमन्यु अभियान क्या है और ये क्यों चलाया जा रहा है, इस अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच हमारे आज के खास कार्यक्रम की मेहमान हैं महिला सुरक्षा शाखा की डीएसपी वर्षाजी सोलंकी। हम रेडियो टिंटेभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम। और जिस तरह से ये अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है और जिले में भी व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये अभियान क्या है हमारे श्रोताओं को आप विशेष रूप से बताने का कष्ट करें, जाने कि किस तरह से पुरुषों को विशेष रूप से जागरूक करने का ये अभियान है, तो ये क्या है।
1: जी नमस्कार, रेडियो टिंटेभील 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। यह अभियान अभिमन्यु जो है वो पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका यह द्वितीय चरण है जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से हम समाज में व्याप्त जो कुरीतियां होती है उसे एक चक्र के रूप में देखते हुए और उस चक्र को तोड़ने के लिए यह अभियान चला रहे हैं। जैसे नशा, अशिक्षा, दहेज प्रथा, लिंग भेद, अश्लीलता, असंवेदनशीलता आदि का जो दुष्चक्र है जो हमारे दिमाग में और हमारे समाज में बहुत गहराई तक व्याप्त है, उसे हमें तोड़ना है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के पुरुषों एवं बालकों को जागरूक करना है ताकि वे अभिमन्यु बनकर इस दुष्चक्र को तोड़ सकें।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ ये अभियान चल रहा है और हमें सभी को जागरूक करते हुए समाज में व्याप्त नशा, दहेज प्रथा, लिंग भेद, अशिक्षा आदि के दुष्चक्रों को तोड़ना ही होगा। साथ ही हमारा एक सवाल ये था कि पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो इस अभियान के तहत ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से सभी को जागरूक किया जा रहा है।
1: जी, इस अभियान के तहत हम मुख्य रूप से नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं जो भीली भाषा अपने झाबुआ जिले को देखते हुए भीली भाषा में किए जा रहे हैं। प्रश्नावली पूछी जा रही है, समझाइश दी जा रही है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पोस्टर और बैनर के साथ में लोगों को लोकल भाषा में समझाइश दी जा रही है। साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं को महिला सम्मान और समानता की शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकला, प्रश्नावली, मैराथन रेस आदि भी करवाए जा रहे हैं।
0: जी, इसी अभियान के तहत विभिन्न माध्यमों से सभी को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने तथा समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित हो, इस हेतु यह महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह अभियान का दूसरा चरण है और इससे पूर्व इसका एक चरण पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है अभियान के प्रथम चरण में जागरूकता का कितना व्यापक असर दिखाई दे रहा है।
1: जी, ये अभियान का दूसरा चरण है। पहला चरण हमारा 12 जून से लेकर 19 जून तक चलाया गया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से गांव-गांव तक एवं फलियों तक जाकर जागरूकता का कार्य किया है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अब हम जब दूसरे चरण में जाके लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैडम, पहले भी पुलिस आई थी और हमें ऐसी चीजें बताई थी जिसे हमको समझ में आता है, लेकिन अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि मानव की प्रवृत्ति होती है कि एक बार सुनने से उसे कम समझ में और कम याद रहता है, वो दूसरी बार सुनता है और देखता है तो उसे ज्यादा समझ में आता है। और यह अभियान तब तक चलाया जाएगा जब तक कि समाज में व्याप्त कुरीतियां, समाज से दूर नहीं हो जाती है और नारी का सम्मान स्थापित नहीं हो जाता है।
0: जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। यकीनन ही जब तक समाज में व्याप्त कुरीतियां दूर नहीं हो जाती, तब तक हमें लगातार इसी तरह के अभियान चलाकर सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। नारी का सम्मान स्थापित होना चाहिए और यही बात हमारे धर्म शास्त्रों में भी देखने को मिलती है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रियाः। अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते हैं, और जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, उन पर अत्याचार होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जी, तो ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा एक सवाल यह था कि पुलिस लगातार महिला सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है और पुलिस विभाग द्वारा इस हेतु लगातार विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आज महिलाएं एवं बालिकाएं अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूक हैं और पुलिस से किस प्रकार सहायता प्राप्त करती हैं?
1: हमारे जिले झाबुआ में आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा का स्तर कुछ हद तक नहीं, ये कहा जा सकता है कि बहुत हद तक कम ही है। तो जब हमें शिक्षा नहीं है तो हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, उनके बारे में हमें समझ नहीं होती है, तो उन्हें बताने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अगम जैन सर और हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रेमलाल कुरवे जी, उनके निर्देश अनुसार मैंने कई प्रकार के महिला सुरक्षा संबंधित अभियान चलाए हैं। मुझे लगता है कि जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। और जो महिलाएं या बालिकाएं हमसे किसी न किसी रूप में किसी अभियान में जुड़ी हैं, उनमें हमने ये देखा है कि वो पुलिस की सहायता कैसे ले सकती है या अपने अधिकारों को किस हद तक प्राप्त कर सकती है, उनमें धीरे धीरे समझ आ रही है।

0: परंतु संभावनाएं अब भी है।
1: जी बहुत सुंदर। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ ही हमें जागरूक होना ही होगा और जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा महिलाओं संबंधी अपराधों में कमी आएगी और उन पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगेगी। पुलिस लगातार इस कार्य में लगी हुई है और झाबुआ जिले में भी पुलिस कप्तान अगमजी जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे जी के निर्देश अनुसार महिला सुरक्षा संबंधी अभियान सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों सहित गांव गांव और फलिए फलिए जाकर सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यकीनन ही यह प्रयास सफल होगा और महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण होगा, इस पर अंकुश लगेगा और महिलाओं का सम्मान कायम होगा। तो कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए हम ये कहेंगे कि हमारे रेडियो टंटे भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज के जो श्रोता हैं, जो विशेष रूप से हमारे इस खास कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए और विशेष रूप से पुरुषों के लिए जो ये अभियान चल रहा है, वे महिलाओं का सम्मान करें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: जी, मैं डीएसपी वर्षा सोलंकी आपके रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को, विशेष रूप से पुरुषों एवं बालकों को से यही कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा नारी का सम्मान करें, उन्हें समाज में समानता प्रदान करें और अभिमन्यु की भांति दुष्चक्र को अवश्य तोड़ें। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप शिक्षित हो, आगे बढ़े और यदि आपको कोई भी परेशान करता है तो हमारे पास आए, झाबुआ पुलिस आपके लिए सदैव खड़ी है। धन्यवाद।
1: जी यकीनन बहुत ही सुंदर सुंदर और उपयोगी बातें आज आपने हमारे श्रोताओं को बताई कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम शिक्षित और जागरूक रहेंगे तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने सम्मान को कायम कर सकते हैं, सम्मान से रह सकते हैं। तो मैडम, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पूर्व अंत में सभी के लिए ये जानना चाहूंगा कि आपात स्थिति में जब पुलिस की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी में बालिकाएं या महिलाएं आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस सहायता का कोई विशेष नंबर भी हमारी माता एवं बहनों को आप अवश्य बताइए, जिनके माध्यम से वे पुलिस से संपर्क कर उनसे सहायता प्राप्त कर सकें।
0: जी, इसके लिए सबसे सरल और सहज नंबर है 100। डायल 100 करके आप तुरंत पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, महिलाओं से संबंधित जो हेल्पलाइन चलाई जा रही है उसका नंबर है 10981098। ये नंबर है और इसके साथ ही हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है 7049140525। इसके साथ साथ में आपको कभी भी कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो आप सबसे पहले 100 नंबर लगा के पुलिस को तुरंत अपने पास बुला सकते हैं। जी धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी महिला सुरक्षा शाखा की डीएसपी वर्षा जी सोलंकी, जिन्होंने आज हमारे सभी सम्मान्य श्रोताओं को पुलिस सहायता के विशेष नंबरों के साथ महिला सुरक्षा की कई उपयोगी बातें बताई कि किस प्रकार से वे पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकती हैं, किस प्रकार जागरूक और सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैडम, हमें अच्छा लगा कि आज आप हमारे बीच उपस्थित रहे और हमारे श्रोताओं को कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपने प्रदान की। हम रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। तो श्रोताओं, आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी सम्मान अभिमन्यु अभियान के माध्यम से आपने महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान पर कई विशेष बातों को जाना। हमें आशा है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही कई विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे आपके अपने पसंदीदा रेडियो रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज पर। तो मैं आपका दोस्त आरजी प्रवीण कुमार सोनी आपसे विदा लेता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
3: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
4: नमस्कार,
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
4: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
3: लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम खेती बाड़ी।
4: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और खास तौर पर उन छोटे छोटे सेगमेंटों पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो गया है आज के इस जमाने में, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि पथरीली इलाका, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पथरीला इलाका है और ऐसे में किसानों को खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है।
3: बिल्कुल, तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान को लेकर रेडियो टांटिया भील आप सभी के लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
4: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम तीन सेगमेंटों पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सेगमेंट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेगमेंट होगा कि हमारे किसान साथी मिश्रित खेती के बारे में किस तरीके से उनका रुझान है और किस तरीके से हमारे किसान साथी मिश्रित खेती कर सकते हैं, खासतौर पर पथरीले इलाकों में। अगर देखा जाए, यदि मिश्रित खेती पर हमारे किसान साथी ध्यान केंद्रित करें तो आने वाले समय में वो इससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट होगा कि पशुपालन का हमारा सेगमेंट रहता है। पशुपालन पर भी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान अपने पास में लगा हुआ है, गुजरात भी पास में लगा हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन सी नस्ल की हमारे गाय भैंस पालन कर सकते हैं, खासतौर पर गायों पर विशेष तौर पर आज ध्यान केंद्रित कराएंगे। और तीसरा सेगमेंट होगा कि अब मई माह में किस तरीके से पशुपालन की देखरेख हमें किसान साथी कर सकते हैं। और चौथा, हम अपने सफल किसान की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसानों की कहानी लेकर आते हैं, उनसे सीखकर हमारे किसान साथी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी में बदलाव कर सकते हैं।
3: बिल्कुल साथियों, तो आइए हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
4: और लेकिन इस कार्यक्रम को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
3: और आपकी आरजे वर्षा के साथ में।

0: साथियों, अभी आपने सुना इस व्हील गाने को और आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर
1: और इसमें जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मिश्रित खेती को कर सकते हैं और किस तरीके से मिश्रित खेती से लाभ कमा सकते हैं। यदि हमारे किसान साथी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान साथियों की आय में जरूर वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे झाबुआ जिले में जो KBK बना हुआ है या फिर कृषि विभाग की जो ऑफिस है वहां पर जाकर हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से सलाह और संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम में मिश्रित खेती के बारे में।
2: कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान

0: से चार फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ तीन से चार फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ चार फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करे, जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं, खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और इस वक्त सुन रहे हैं आप झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, और अभी हम सुन रहे थे मिश्रित खेती के बारे में। आगे हम आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं और ले चलते हैं आपको कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
2: तो आइए दूसरा कंपोनेंट हम सुनते हैं और इसमें जानते हैं पशुपालन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का रख रखाव और साथ साथ में मई माह का कैलेंडर पर भी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, और इसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो हमारे गाय भैंस हैं उसका मई माह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, किस तरीके से उनका देख रेख कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
3: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नज़र से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूल, इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे।
1: साथियों, अभी आपने सुना इस रिपोर्ट को, जिसमें हमें बताया गया कि पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम इनसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। आगे आपको कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं अपने विषय विशेषज्ञ से और ज्यादा जानकारी इस विषय को लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
2: बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
1: और आपकी आरजे वर्षा के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी। I'm not going to be able to do that.

Thank you.

0: करब मारे थोड़ो।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है। जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़िया ग्याबन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है। साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है। इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है खासकर राजस्थान की जलवायु है उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं। साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ ही इनके जो ग्याबन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गाय को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गाय को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है। और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है। गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है। साथ ही उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है।
3: किसान भाइयों बहनों आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
4: मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं की देखरेख करना चाहिए, कौन सी नस्ल हो हमारे किसान पालना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कार्यक्रम में आगे हम सुनते हैं सफल किसान की कहानी। लेकिन सफल किसान की कहानी से सुनने से पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।
5: आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दुर्गामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है। इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती है और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं।
6: मैं किसान हूं, पारंपरिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है वो जैविक खेती के बारे में सुना ऐसे लोगों से कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसके हिसाब से हमने को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बजाज ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत घन जीवामृत 10 प्रणियार वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ, उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत घन जीवामृत ये सब डाल के बना रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है और उनकी तरफ से हमारे को क्या है प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। धीरे धीरे ड्रिप इरिग्रेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला।
7: राजस्थान में पानी की कमी है,
6: राजस्थान में जैसे पानी की यहाँ सूखा रहता है तो पानी की तो क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से। और फिर क्या वो बोले कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से गोमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत घन जीवामृत 10 प्रणियारक वगैरह सब बनाते हैं और तुरंत तुरंत खाद जो अपने हुमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं और इससे बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है, तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है,
7: नई
6: तकनीक और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है।
5: बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई है। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है।
6: सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी हिसाब से जैविक रासायनिक वगैरह 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और अपने क्या तुरंत बिक जाते हैं। ऐसे माल भी ग्राहक भी अपने कहते हैं यार आपकी चीज बहुत अच्छी है, हमको आपका माल ही चाहिए, उसी हिसाब से वो भी ले देते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, 1-2 रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं ना, अपने आप बिक जाते हैं। किसानों को सलाह यही देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे भी करना है, इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपने स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो जैविक खेती अपनाओ और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा।
5: बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, अभी आपने सुना सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी आय को दोगुना किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
0: और साथियों, एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम जो लेकर आते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें जरूरी हैं और हमारे किसान साथियों के लिए आय को दोगुना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। खासतौर पर उन किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास थोड़ी जमीन है और वो भी पथरीली इलाका उनके पास है और पानी रुकता नहीं है। तो सबसे पहले उनको हम बता देना चाहते हैं कि अब आने वाले बरसात के दिनों में हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा झाबुआ जिले में समस्या है पानी को लेकर, तो किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, खेत का पानी खेत में कर सकते हैं, सरकार की स्कीम्स का, सरकार की योजना का फायदा लेकर हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में ऐसी खेती को हम विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक पद्धति से खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, उत्पादन अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे किसान साथी जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में केवीके भी है, वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं।
5: तो साथियों, जी हाँ साथियों, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा दिए गए नंबर पर फोन करके हमें जरूर बताएं। अब इस कार्यक्रम से जाने के दीजिए हमें अनुमति, यानी कि आपकी आरजी वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
5: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
0: और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को।

0: एम तरफ मारे
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग आपके हेल्थ के संग, आपके स्वास्थ्य के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ है डॉक्टर शानू जैन, जो एक सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं HCG हेल्थ केयर सेंटर नागपुर में। थैंक यू सो मच डॉक्टर शानू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आई वुड सिंसियरली लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए।
1: थैंक यू समीर जी फॉर अ वार्म वेलकम। तो मैं डॉक्टर शानू जैन नागपुर में पिछले 12 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आई एम अ सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। मेरा सारा स्टडी जो हुआ है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से और फिर हैदराबाद से, और ऑन्कोलॉजी जो कैंसर का स्पेशलाइजेशन और जो फर्दर स्टडीज है वो मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में किया था, रेसिडेंसी भी किया था और फेलोशिप भी किया था। थैंकफुली मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें मेरा एक रेक्टल कैंसर पर एक स्टडी था और हमने वो प्रेजेंट किया है, एंड आई हैव रिसीव्ड फ्यू मेडल्स आल्सो इन सम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एंड या आई एम हियर फॉर पास्ट 10 years 12 years, एंड आई एम डेडिकेटेड to the cancer treatment and cancer में जितने भी advanced radiation techniques होते हैं वो उनसे हम patients को treat करते हैं और उन्हें एक proper staging and diagnosis होने के बाद में जो भी appropriate treatment होता है as a teamwork हम उनको offer करते हैं।
0: बहुत खूब, amazing amazing। दोस्तों आपने सुना डॉक्टर शानू 12 साल से ज्यादा के समय से प्रैक्टिस कर रही हैं, कैंसर ट्रीट कर रही हैं, हिंदुस्तान के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली है। तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर फील्ड में यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट में डॉक्टर शानू परफेक्ट है, एक्सपर्ट है, जानकार है। आज हम डॉक्टर शानू मैम से बात करेंगे इसी बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत सारे लोग कैंसर के बारे में जानते हैं फिर भी बहुत गलत फहमियां पालते रहते हैं। यूं कहा जाए तो देखिए, मैं भी कैंसर के बारे में काफी कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी जब अचानक से कोई लेमैन मुझसे पूछ बैठता है तो मैं भी देखा जाए तो घबरा जाता हूं। तो प्लीज हमें बताइए ना बिल्कुल साधारण भाषा में कि कैंसर क्या है और क्या ये सचमुच इतना खतरनाक है जितना हम इसे समझते हैं।
1: अगर मैं बताऊं कि कैंसर क्या है, कैंसर एक ऐसी स्थिति है जहां पर शरीर की कुछ कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होने लगता है और उस विभाजन की वजह से वहां पर एक गांठ या ट्यूमर की उत्पत्ति होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में जब आप हमारी कोशिकाएं होती है वह वृद्धि, विभाजन और अंततः प्राकृतिक मृत्यु ऐसे एक साइकिल से विशिष्ट पैटर्न को फॉलो करती है। बट कैंसर में ये जो नॉर्मल पैटर्न होता है सेल के डिवाइड होने का और उसके ऑटोमेटिक उसका डेथ होने का, हाँ, तो ये वाला जो साइकिल है वो डिसरेगुलेट हो जाता है और यहाँ पर सेल्स अनकंट्रोल वे में प्रोलिफरेट करने लगती है या बढ़ने लगती है। तो इनिशियल स्टेजेस में जब ये होने लगता है जिस भी कारण से हो, अलग अलग कारण होते हैं उसके, तो इनिशियल स्टेज में वो लोकल जहां पर जिस जगह पर है वहीं रहता है, लेकिन अगर उसको सही समय पर निदान ना किया जाए उसका तो वो फिर शरीर के दूसरे भागों में भी फैलने लगता है। तो ऑब्वियसली अगर ध्यान ना दिया जाए या ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो कैंसर शरीर के दूसरे भागों में फैल कर जानलेवा साबित हो सकता है। बट द मेन मैसेज इज कि अगर हम इसे अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लेते हैं तो यह बिल्कुल एक ट्रीटेबल बीमारी है और उससे इतने डरने की बात नहीं है।
0: बहुत खूब, थैंक यू सो मच डॉक्टर शानू मैम। दोस्तों आपने सुना, अगर हम इसे पहले ही पहचान लें और ट्रीटमेंट शुरू कर लें तो ये बिल्कुल एक आम बीमारी की तरह है। ये इसे खतरनाक समझकर इसे एक तरीके से मृत्यु सेंटेंस, मृत्यु का संदेश समझकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल एक साधारण बीमारी की तरह है, शर्त यही है कि हम इसे पहले पहचान लें। थैंक यू सो मच मैम। वैसे आगे बढ़ते हुए इसी बात से संबंधित एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि कोई व्यक्ति भला कैसे पहचान सकता है कि शायद उसे कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? मतलब शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जब उसे लगे कि मुझे चेकअप करा लेना चाहिए?
1: ओके, तो मैं आपको एक बेसिक कैंसर का थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कैंसर जैसे हमने बात करी एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, तो जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो है कार्सिनोमा, वो स्क्वेमस या एडिनोटाइप का होता है और वो शरीर के किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो सकता है, अगर ऑर्गन यानी अंग में, और वही अगर ब्लड फॉर्मिंग सेल्स या बोन मैरो जो होता है, जो हड्डी के अंदर बोन मैरो फॉर्मिंग सेल्स में अगर व्हाइट सेल्स का कुछ होता है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर हड्डी, हाँ, अगर हड्डी का कोई कैंसर है या सॉफ्ट टिश्यू या मसल्स का कुछ रहता है उसे सार्कोमा कहते हैं। जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली
0: इम्यून सिस्टम
1: में जो व्हाइट सेल्स, हाँ, व्हाइट सेल्स का जो प्रोलिफरेशन होता है लिम्फ नोड्स में जो होता है उसे लिम्फोमा कहते हैं। ब्लड में प्लाज्मा सेल्स अगर बढ़ रहे हैं तो या अबनॉर्मल होते हैं तो वो माइलोमा होते हैं। तो ये विभिन्न कैटेगरी ऑफ सेल्स हैं जो विभिन्न कैटेगरी कैंसर्स को की उत्पत्ति होती है जिनसे। तो अभी मैं मोस्ट कॉमनली जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं सॉलिड ट्यूमर्स, यानी कि जो अंग से कार्सिनोमा, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो जो कार्सिनोमा है वो जैसे मैंने की बताया कि किसी भी अंग से शुरुआत हो सकती है, तो वो शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी अंग में हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ जो पाया जाने वाला कैंसर होता है वो होता है मुंह का कैंसर या गले का कैंसर। तो अगर मुंह का कैंसर है, कोई छाला है, तो और वो काफी टाइम से ठीक नहीं हो रहा है, आप दवाइयां ले रहे हैं लेकिन वो वैसा ही है या बढ़ रहा है, आपका मुंह खुलना कम हो जाता है उसकी वजह से, गले में गांठ है अगर है, या मुंह से कहीं खून निकल रहा हो बार बार उस छाले में से, और गले में आवाज बैठ रही हो, ये सारे जो सिम्टम्स है ये मुंह के और गले के कैंसर्स के सिम्टम होते हैं। अगर वही अगर आप महिलाओं में देखें तो जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, यानी स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो अगर कोई भी गांठ होती है जो साइज में बहुत ही जल्दी बढ़ रही है, और कभी निपल से एबनॉर्मल ब्लड का डिस्चार्ज हो सकता है या स्किन अंदर धंस रही हो, साइज में फर्क हो रहा हो, तो ये सारे ब्रेस्ट कैंसर्स के सिम्टम है, बगल में गांठ आना या ब्रेस्ट में कोई गांठ फील होना। अगर वो सर्वाइकल कैंसर है तो सर्वाइकल या यूटेराइन कैंसर या गर्भाशय का जो हम कहते हैं कैंसर, उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स के अलावा अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है किसी भी महिला में, उनको मेनोपॉज हो गया हो, उसके बाद में भी अगर कुछ ब्लीडिंग महसूस हो रही है तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है, या परसिस्टेंट वाइट डिस्चार्ज या डिस्चार्ज है जिससे स्मेल आ रहा हो। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन या डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अगर आपका अगर हम आहार नलिका की बात करें तो आहार नलिका में अगर आपको खाना निगलने में दिक्कत होती है, अगर अटक रहा है खाना, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। अगर आपको लंग्स का कैंसर होगा तो शुरुआती स्टेज में खांसी होना या परसिस्टेंट खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, या अगर रेक्टम कैंसर है जो अगर परसिस्टेंट आपको मल के साथ में ब्लीडिंग हो रहा हो या ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, तो ये जो शुरुआती लक्षण होते हैं खांसी में ब्लीडिंग होना या स्टूल्स के साथ में ब्लीडिंग होना, यूरिन में ब्लीडिंग होना, तो ये अगर असामान्य रक्तस्राव कहीं से भी हो रहा है तो वो एक उसका सिम्टम रहता है। और सामान्य तौर पर मतलब कोई भी घाव या छाला अगर नहीं भर रहा है, स्किन में चेंजेस होने लगते हैं, खाने का मन नहीं करता है, वजन में कमी, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हम कहते हैं
0: जी
1: कि खाना ही नहीं खा रहे, मन ही नहीं कर रहा है, वजन घटते जा रहा है, शरीर में दर्द रह रहा है, थकावट महसूस हो रही है, तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं और जिस जगह का है उस हिसाब से कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स हर कैंसर के अलग-अलग होते हैं।
0: जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर शानू, थैंक यू सो मच। दोस्तों जितना मैं समझ पाया हूँ डॉक्टर साहब के कहने से, जाहिर सी बात है अब अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको बेहतर समझ आया होगा, लेकिन फिर भी कहीं से भी कोई असामान्य रक्त स्राव यानी कि असामान्य ब्लीडिंग हो रही है कहीं से भी, चाहे वो मुंह से हो रही हो, लंग्स से हो रही हो, आप खांसी आ रही है तो उसमें ब्लड आ रहा है, या आपके स्टूल में मल में अगर ब्लड आ रहा है, आपके स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, छालों में से ब्लड आ रहा है, कोई भी असामान्य ब्लड ब्लीडिंग अगर हो रही है तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, हमें इसकी चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर साहब ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बताया, सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी बताया, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए हम डिसाइड करें कि हमें कुछ इस तरीके की चीज हो रही है जो असामान्य है और हम ये सोचें कि चलिए किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिल लेते हैं, तो वहां जाने से पहले हमें क्या क्या टेस्ट करा लेने चाहिए, जांचें कुछ एक अंदाजा, ऑफ कोर्स आपके पास आने के बाद तो आप स्पेशलाइज्ड टेस्ट लिखेंगे कि ये जांचें करानी है, फिर भी आपके पास पहुंचने से पहले हम क्या क्या जांच करा लें।
1: देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंसर में सबसे पहले एक ट्यूमर डेवलप होता है,
0: जी
1: ट्यूमर सबसे पहले हमें एक गांठ जैसा भी फील होता है कई बार, तो कई बार जो कैंसर का डायग्नोसिस है उसके लिए जो सबसे पहली जांच होती है वो होती है बायोप्सी की जांच, या जिसे
0: जी
1: कहते हैं कॉमन इसमें हाँ टुकड़े की जांच,
0: जी
1: एफएनएसी या बायोप्सी। तो उसमें उस गांठ में से या छाले में से हम एक टिश्यू लेकर उसको हम माइक्रोस्कोपी में एग्जामिन करके उसका डायग्नोसिस स्टैब्लिश करते हैं कि वो कौन से टाइप का कैंसर है। वह सबसे ज्यादा जरूरी होता है कैंसर के डायग्नोसिस को स्टैब्लिश करने के लिए। तो अगर वो आपकी प्राइमरी डॉक्टर जिनके पास आप कोई भी सिम्टम लेके गए हैं और वहां पर अगर बायोप्सी में कुछ भी कैंसर जैसा आता है तो डेफिनेटली वो लेकर आपको हमारे पास आना है। और उसके पहले कैंसर डायग्नोसिस के पहले तो हम यही बोलेंगे कि आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए, जैसे कि एक्सरे है, सोनोग्राफी है, ताकि कुछ भी एबनॉर्मल हो तो पता पड़े। लेकिन अगर बायोप्सी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम कैंसर का बकायदा, आप जब हमारे पास आते हैं तब हम बकायदा उसका एक पूरा स्टेजिंग करते हैं कि कैंसर का एक्सटेंट जानने के लिए कि वो कितना उस वो फैला है, वो उसी जगह पर है या आजू बाजू में भी स्प्रेड हुआ है या शरीर के किसी और भाग में भी स्प्रेड हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द कैंसर अलग अलग हम इन्वेस्टिगेशन बताते हैं। द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है हमारे पास आने के बाद में कि हम या तो पेशेंट को सीटी स्कैन बताते हैं या एमआरआई बताते हैं या पेट सीटी बताते हैं, वो सारा एक स्टेजिंग स्टैब्लिश करने के लिए, टू नो द एक्सटेंट ऑफ द डिसीज। और स्टेजिंग होने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि पहले क्या करना है और फिर आगे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, इस हिसाब से होता है हमारा
0: परफेक्ट परफेक्ट। दोस्तों बहुत साफ तौर पर बहुत ही सीधी साधी सिंपल लैंग्वेज में डॉक्टर शानू बता रही हैं कि आप नॉर्मल रूटीन अपने टेस्ट्स करवाते रहिए अपने जो भी फिजिशियंस आप जिनसे मिलते रहते हैं, और अगर उन्होंने फाइन नीडल एस्पिरेशन के थ्रू यानी कि एफएनएसी जिसको बोलते हैं या फिर बायोप्सी से अगर उन्होंने देखा है कि कुछ तो बेहतर जानकारी होनी चाहिए उस ट्यूमर की, पॉजिटिव है अगर वो, तो वो आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। वहां भी आपको बिल्कुल भी एक भी पैसे की घबराने की जरूरत नहीं है, कैंसर स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर शानू है वो आपकी पूरी जांच करती हैं, कुछ और टेस्ट्स लिखती हैं करवाती हैं, इसलिए कि वो पता कर लें कि आपका कैंसर कहाँ है, कितना हो गया है। ये पहली ही स्टेज है दोस्तों, अगर हमने इस पहली ही स्टेज पर उसे पकड़ लिया तो हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, आप डॉक्टर के पास जाइए। तो बहुत खूब, थैंक यू सो मच डॉक्टर शानू। तो आगे पूछना चाहूंगा कि अब जस्ट इन केस हमें पता चल गया कि ओके कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपके पास पेशेंट फर्स्ट स्टेज का ही आए, फिर आप कैंसर के इलाज के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं?
1: जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर कैंसर अलग सिम्टम्स और स्टेज वाइज प्रेजेंटेशन होता है, तो उसी तरह ट्रीटमेंट भी हर कैंसर का एक डिफाइंड, हमारे इंटरनेशनल डिफाइंड प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कौन से कैंसर के कौन से स्टेज के लिए हमें लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो प्रायः जितने भी सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उन्हें हम सर्जिकली रिमूव करने का, अगर अर्ली स्टेज में है तो हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि हम सर्जरी करके वो ट्यूमर को बाहर निकालते हैं। तो कैंसर के अलग अलग टाइप से इलाज होते हैं, एक होता है सर्जिकल रिमूवल, एक होता है कीमोथेरेपी या एनी काइंड ऑफ सिस्टमिक थेरेपी, जहां पर हम इंजेक्टेबल्स या ओरल टैबलेट्स के थ्रू दवाइयां देते हैं जिसमें वो ब्लड में रन करके कैंसर का सेल अगर कहीं पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रन करता है तो उसको वो टारगेट करके मारता है, किल करता है कैंसर सेल को। थर्ड टाइप का ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है रेडिएशन थेरेपी, जिसकी

0: मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ, तो रेडिएशन थेरेपी हाई एनर्जी एक्सरे का इलाज होता है, जो क्ष किरण या वी किरण जिसे हम कॉमन हिंदी भाषा में कहते हैं
1: जी।
0: तो ये बहुत ही हाई एनर्जी एक्सरेज का ट्रीटमेंट होता है, काफी फोकस्ड और प्रिसाइज ट्रीटमेंट होता है। और ये सेल के जिस जगह पर कैंसर है, हम उस जगह पर जब रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो ये सेल के डीएनए को डायरेक्टली हिट करके उसको मारता है। तो ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये लोकल ट्रीटमेंट है। सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी जो होते हैं ये लोकली जो ट्यूमर है उस पर एक्ट करते हैं, और ब्लड में अगर कुछ रन कर रहा हो तो उसके लिए कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी इस टाइप के कुछ इलाज होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, हमें अगर अर्ली स्टेज है तो हम डायरेक्टली सर्जरी ऑफर करते हैं, अगर थोड़ा सा सेकेंड या थर्ड स्टेज में रहता है तो कई बार हम कोशिश करते हैं कि उसे कीमो देके या कुछ रेडिएशन देके थोड़ा छोटा किया जाए और बाद में हम ऑपरेशन करते हैं। और अगर थोड़ा बड़ा हुआ है या बहुत ही ज्यादा अगर फैला हुआ है तो फिर ऐसे केसेस में, अगर शरीर के दूसरे भागों में फैला हुआ है तो ऐसे केसेस में हम कीमोथेरेपी ही मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं पेशेंट्स को।
1: बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडिएशन थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, ये चीज डॉक्टर साहब ने अभी बताई। बहुत ही आसान, बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही कारगर तरीका है ये कि शरीर के जिस हिस्से में भी कैंसर है वहाँ पर फोकस करके रेडियोथेरेपी दी जाती है और जो बीमार सेल्स हैं उनको मारा जाता है। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा रेडिएशन थेरेपी से ही संबंधित कि ये मैं मानता हूँ अलग अलग कैंसर पर अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते होंगे, लेकिन फिर भी ये अंदाजन कितने दिनों के लिए ये चलती है थेरेपी और कितनी प्रभावी होती है। एक जनरल इंसान ये समझना चाहेगा कि अगर मैं रेडियोथेरेपी करा लूं तो मैं वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कितना परसेंट ठीक हो जाऊंगा ये।
0: देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंसर का एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है
1: जी।
0: सिर्फ एक थेरेपी से यूजुअली काम नहीं होता है, तो इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। और जहां तक रेडिएशन थेरेपी की बात है तो रेडिएशन थेरेपी जिस इंटेंशन से दिया जा रहा है, तीन इंटेंशन से हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। एक तो होता है रेडिकल रेडिएशन थेरेपी या क्यूरेटिव रेडिएशन थेरेपी, जहां पर हम बीमारी को जड़ से ठीक करने के इंटेंशन से रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो यूजुअली ये वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं डेढ़ से दो महीने के बीच चलते हैं। हफ्ते में 5 दिन हम ट्रीट करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ, तो ऐसे टोटल 6 to 7 weeks का तो ट्रीटमेंट रहता ही रहता है
1: जी।
0: और अगर हम ऑपरेशन के बाद बीमारी उस जगह पर वापस ना आए, अगर हम इस इंटेंशन से देते हैं, ये जो सेकेंड इंटेंशन है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 weeks का ये ट्रीटमेंट रहता है
1: जी।
0: और जो थर्ड इंटेंशन है वो है पैलिएटिव इंटेंशन, हाँ, जहां पर हमारा इंटेंशन बीमारी को जड़ से ठीक करना नहीं, बीमारी को, अगर बीमारी से कोई सिम्टम है जैसे कि पेन है या कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है या अगर हड्डी में बीमारी है और वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है और आपको वीकनेस आ सकता है आगे, तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए और तकलीफें कम करने के लिए हम पैलिएटिव इंटेंट से रेडिएशन देते हैं, जहां पर पेशेंट की तकलीफें हम कम करने में काफी कारगर होते हैं। तो
1: रेडिएशन के लिए होती है डॉक्टर साहब?
0: हाँ, ये वाला जो होता है, हाँ, पैलिएटिव वाला जो है ये 2 weeks का ही रहता है,
1: 2 हफ्तों के लिए जी।
0: हाँ, या कभी कभी अगर पेशेंट का जनरल कंडीशन अच्छा नहीं है तो उसे हम 1 week में भी कंप्लीट कर देते हैं
1: जी।
0: वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, मगर अगर क्यूरेटिव इंटेंट से देखा जाए तो जहां पर भी इंडिकेटेड है और हम अगर रेडिएशन थेरेपी का उपचार कर रहे हैं तो क्यूरेट्स आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्जरी, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स है। तो अर्ली स्टेज में अगर हम दे रहे हैं या इवन थोड़ा बड़ा हुआ भी अगर रहे तो जो सर्वाइवल रेट्स है वो सर्जरी के कंपेरेबली होते हैं, तो 70 to 80% chance रहता ही है कि बीमारी ठीक हो जाएगा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये परसेंटेज जो आपने बताया, ये प्रतिशत जो आपने बताया अंदाजन 70% से 80%, तो बहुत ही अच्छा प्रतिशत है। दोस्तों आपको सुनकर जरूर बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, रेडिएशन थेरेपी से इस चीज का इलाज हो रहा है। बड़ी ही मजेदार बात है कि रेडिएशन थेरेपी में ना तो आपको कोई इंजेक्शन देना है, ना कोई दवाइयां देनी है। अगर पहली स्टेज में पकड़ में आता है तो 70 से 80% तक, डिपेंड करेगा कौन सी तरीके का कैंसर है, ये डॉक्टर्स ही डिसाइड करेंगे। लेकिन हम मान सकते हैं कि हम 70-80% बीमारी से आजाद हो सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये, बहुत खूब, थैंक यू सो मच डॉक्टर।
0: आजकल हाँ, और कुछ और भी बताना चाहूंगी इन्फॉर्मेशन कि आजकल इतने टेक्निकल एडवांस आ गए हैं, जो रूटीन हमारे रेडिएशन के टेक्निक्स होते थे उसमें हम एक स्टैंडर्ड डोज पैटर्न फॉलो करते हैं कि पर फ्रैक्शन हमारा 2 ग्रे का ही डोज जाएगा या उससे कम। बट आजकल इतने एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं, जिसे हम कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी SBRT या स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी यानी SRS, तो ये बहुत ही हाई प्रिसिजन हाईली फोकस्ड रेडिएशन टेक्निक्स होते हैं, जहां पर हम ये पूरा क्यूरेटिव इंटेंट, जो 1-1.5 महीने लगने वाला जो ट्रीटमेंट था, उसको सिर्फ हम 5 fractions में फिनिश कर सकते हैं।
1: अरे वाह,
0: सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटी। हाँ, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक एंड दिस ट्रीटमेंट कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही अर्ली स्टेज लंग कैंसर है, जहां पर हम ऑपरेट किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, और हम अगर SBRT का ट्रीटमेंट करते हैं एलिजिबल पेशेंट के लिए, मतलब तो वो 5 fractions में सिर्फ कंप्लीट हो जाता है। उसमें पर फ्रैक्शन बहुत ही हाई डोज दिया जाता है, और ऑब्वियसली उसके लिए काफी एडवांस टेक्निक्स और सारा सपोर्टिंग स्टाफ भी वो सारे टेक्निक्स को ट्रीट करने के लिए ट्रेन होना चाहिए। तो थैंकफुली वी हैव दैट ओवर हियर। तो ये, और या तो ब्रेन में कई बार ऐसा रहता है कि बीमारी शरीर का तो ठीक है, लेकिन ब्रेन में एक हद लीजन आया हुआ है, या स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रा में एक हद लीजन आया है
1: जी।
0: तो ऐसे केसेस में भी हम जब ये SBRT या SRS को यूज करते हैं, तो वो एज गुड एज अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है। नहीं तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैल गया, मतलब वो स्टेज 4 हो गया है और अब उम्मीदें कम है, ऐसा हो जाता था। मगर आजकल के जमाने में अगर वो 1-2 जगह गया है, और हम अगर SBRT और SRS इस टाइप की टेक्निक से अगर ट्रीट करने में कामयाब होते हैं, तो वो एज गुड एज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीजें मैं पूछना चाहता था डॉक्टर साहब, लेकिन आपने खुद ही अपने आप से ही ये सारी चीजें बता दी कि कितनी खूबसूरती से नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके रेडिएशन थेरेपी को और ज्यादा प्रभावी बनाया गया है, कि ट्रीटमेंट मोडालिटी बहुत कम समय में ही कंप्लीट हो जाती है, और उसकी रिस्पांस है यानी कि उसके जो फायदे हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है। बहुत खूब, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि यूं किस किस तरह के कैंसर मतलब रेडिएशन थेरेपी से ठीक किए जा सकते हैं, कौन कौन से, कुछ के नाम बताइए ना।
0: ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्योरली, जैसे मैंने बताया मैक्सिमम कैंसर्स में 2 मोडालिटी, मिनिमम 2 या 3, मैक्सिमम 3 मोडालिटीज का जरूरत पड़ता ही पड़ता है
1: जी।
0: तो इवन जहां पर हम कहते हैं कि हम रेडिएशन थेरेपी से प्राइमरी उपचार कर रहे हैं, वहां पर भी हम कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी या ओरल टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं
1: जी,
0: उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए
1: जी। जी, अरे वाह, दैट्स नाइस जी।
0: रेडिएशन थेरेपी से ठीक किए जा सकते हैं, उसमें मुंह के कुछ कैंसर हैं जहां पर हम ऑपरेट करना, अगर पेशेंट नहीं चाहता है कि मैं ऑपरेट कराऊं या वो मेडिकली फिट नहीं है, तो जबान का कैंसर हो गया, या गले का, लैरिंग्स का कैंसर है, PFS का कैंसर है, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर आपको ऑपरेशन करना है तो आपका पूरा वॉइस बॉक्स ही निकालना पड़ेगा। तो कई बार पेशेंट्स इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम प्राइमरी ऑर्गन प्रिजर्विंग अप्रोच, यानी हम ऑर्गन को बचा सकते हैं, उस इंटेंशन से हम पूरा रेडिएशन थेरेपी से उसको अगर अर्ली स्टेज में है तो क्योर करने के इंटेंट से ट्रीट करते हैं। बाकी ये सेम चीज आहार नलिका के लिए भी लागू होती है, और रेक्टल कैंसर्स के लिए भी हम बीमारी को छोटा करने के इंटेंशन से जब कई बार रेडिएशन देते हैं, तो कई बार हमने ऑब्जर्व किया है सिर्फ रेडिएशन थेरेपी और ओरल कीमो के टैबलेट से ही कंप्लीट रिस्पॉन्स कभी कभी आ जाता है।
1: अरे
0: तो
1: वाह,
0: ऐसे भी, हाँ, तो ऐसे पेशेंट्स रहते हैं। ऑब्वियसली हम उनको फॉलोअप पे बुलाते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हम उनको फॉलोअप पे बुलाते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर कभी कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया है तो हम ऑब्जर्व करके हम पेशेंट को काफी टाइम कोलोस्टोमी बैड ना लगे ये हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी ऑपरेशन के बाद जहां पर रेडिएशन थेरेपी देने की बारी आती है, वो फिर शरीर में कहीं पे भी जहां पे ऑपरेट हुआ है उसके बाद, और प्राइमरी जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था लंग कैंसर है,
1: जी
0: तो लंग कैंसर अगर अर्ली स्टेज में है तो हम उसको भी डेफिनेटिव रेडिएशन देते हैं, या अगर हम सार्कोमास वगैरह है तो ये थोड़े से बैड टाइप के कैंसर होते हैं, इनके लिए ऑपरेशन ही बेटर है। तो इन ऐसे सारे जो कैंसर्स हैं उनको हम ऑपरेशन के बाद रेडिएशन ऑफर करते हैं।
1: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत डिटेल में डॉक्टर साहब आपने समझाया। बहुत बहुत सारे जो हमारे दिमाग में गलतफहमियां थी वो आज दूर हुई होंगी। तो वैसे ये इस तरीके की सारे के सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज, यानी कि ये तरीके अच्छे, जो प्रिसाइज रेडिएशन थेरेपी के बारे में आपकी आपने बात की, ये हमारे देश में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कुछ थोड़ा सा ज्ञान दीजिए ना।
0: ये सारे मेजर सिटीज जो है, मेट्रोस प्लस आजकल मैक्सिमम टीयर टू सिटीज में भी रेडिएशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं।
1: जी
0: और आप जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी ये अवेलेबल है। जैसे कि एम्स हो गए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, साउथ में सीएमसी बेलोर है, या

0: कॉर्पोरेट्स में रेडिएशन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों आपने जाना कि ये इलाज अब सब तरफ, चारों तरफ अवेलेबल है, चारों तरफ मौजूद है, बहुत आसानी से मौजूद है। तो हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल आराम से अपने डॉक्टर के साथ उससे सलाह लेकर उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और ये पूरा का पूरा क्यूरेबल है, तो डरने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साहब, ये इलाज कुछ तकलीफ देह भी होता है क्या? कुछ इसमें साइड इफेक्ट्स या कुछ दर्द?

0: करें कि लार सूख जाएगी या स्वाद चला जाएगा।
1: हाँ, अगर मुंह का कैंसर के लिए हम रेडिएशन दे रहे हैं तो
0: उसी केस में,
1: अगर हाँ तो अगर पेल्विक कैंसर के लिए दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े अलग रहेंगे, जैसे कि पेशाब में जलन होना या लूज मोशन होना। तो डिपेंडिंग ऑन द साइट साइड इफेक्ट वेरी करेंगे, बट मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स आर रिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स।
0: तो इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी तो कुछ दवाइयां होती होंगी ना, जो बड़े आराम से हम लोगों को हेल्प कर देंगी पेन के लिए या फिर छालों के लिए।
1: बीइंग अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कई बार अगर मुझे पेशेंट कहते हैं कि साइड इफेक्ट के डर से मैं इलाज नहीं कराऊं और मैं कुछ दूसरा कराऊं, तो मैं ये कहूंगी साइड इफेक्ट हो रहा है मतलब अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि रेडिएशन काम कर रहा है
0: जी।
1: तो साइड इफेक्ट को हम मना नहीं करेंगे, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत होना ही है, क्योंकि रेडिएशन दे रहे हैं तो आजू बाजू में थोड़ा बहुत
0: तो
1: रेडिएशन जाएगा ही जाएगा।
0: बिल्कुल हाँ, सही कहा।
1: बट उसको कम से कम हम कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे एडवांस टेक्निक्स से आजकल हमें ये करना संभव है। और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जो मुंह में सूखापन या जो भी आप कहें लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द साइट, वो भी हम काफी कम करने में कामयाब हुए हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हम पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप हमें रेगुलर इंटरवल्स पे

0: स्पेशलिस्ट है, एक सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, लेकिन वो इंसान है, एक इंसान है, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं दुनिया में, डॉक्टर होने के नाते भी वो चाहती हैं कि दुनिया पूरी तरह से स्वस्थ रहे, कोई भूखा ना हो, और अपने परिवार के साथ वो सुखी सुखी रहना चाहती हैं। जाहिर सी बात है वो आपके लिए भी यही चाहती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शानू। और बस चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई पेशेंट या कोई कोई भी एक नॉर्मल इंसान आपसे और बेहतर जानकारी के लिए संपर्क करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है आपसे संपर्क?
1: तो पेशेंट मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7024110502। ये नंबर मैं मेरे पेशेंट्स के साथ में शेयर करती हूँ, और वो मुझे मेरी वेबसाइट भी है drshanujain.com, वो उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे भी अगर कॉल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ईमेल लिख सकते हैं, मेरा मेल आईडी है drshanu.onco@gmail.com, drshanu.onco@gmail.com।
0: बहुत खूब दोस्तों, डॉक्टर साहब ने अपनी मेल आईडी आपको बताई है, अपना फोन नंबर दिया है, उनकी वेबसाइट भी है, अगर आपको और जानकारी चाहिए हो या फिर आप इलाज से संबंधित डॉक्टर शानू मैम से जुड़ना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। जस्ट इन केस आप भूल भी जाते हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं कि हम डॉक्टर शानू मैम से आपको जुड़वा दें। डॉक्टर शानू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू माई प्रोग्राम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके हाथ में आपके हाथों में ईश्वर एक ऐसी ऐसी जादू की छड़ी दे जिससे कि आपके सारे मरीज बस आपके पास पहुंचते ही ठीक हो जाए, मेरी दुआ है।
1: बहुत
0: बहुत शुक्रिया। थैंक यू, प्लीज टेक केयर।
1: यस, थैंक यू। या

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ कहीं का, उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है

0: लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।
1: एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं।
0: अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

अच्छे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर ले, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल।

अरुणा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हेमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हेमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहां तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। चलिए दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म बनाई। आइए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

हिमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया इसी नाम का ये गीत।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हेमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता, प्रेमनगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा वगैरह वगैरह। पेश है उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और की

0: दोस्तों, हिमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हाँ, सब बोलो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में जिस कलाकार के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसे बहुत प्यार से जंपिंग जैक भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जितेंद्र जी की। इन्हें कौन नहीं जानता, अपने जमाने के मशहूर अभिनेता, आज के टीवी और फिल्म निर्माता, साथ साथ बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर्स और ALT एंटरटेनमेंट के चेयरमैन भी हैं। ये अपने समय में अपने डांसिंग स्टाइल को लेकर बहुत फेमस थे। इन्हें साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों सुनते हैं जितेंद्र जी की फिल्म का ये गीत।

जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। इनका जन्म हुआ तो पंजाब में, लेकिन इनका बचपन मुंबई में बीता। इनके बचपन का नाम रवि कपूर था, जो कि बाद में इन्होंने बदल लिया। आइए दोस्तों सुने ये गीत।

0: जितेंद्र जी की उनकी पत्नी शोभा से पहली मुलाकात जब हुई तब वो कुल 14 साल की थीं। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज कंप्लीट किया और फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। जब जितेंद्र 1960 से 1966 के बीच अपने आप को इंडियन सिनेमा में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे तब उनका रिलेशन शोभा के साथ शुरू हुआ जो 1972 तक चला और फिर इनकी शादी हुई। लीजिए दोस्तों एक और गीत।
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना।

0: जितेंद्र का एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत लंबा रहा। 1960 से शुरू होकर 1990 तक लगभग 30 साल। इन्हें पहला मौका मात्र 17 साल की उम्र में 1959 में मिला। इसके बाद इन्हें दूसरा बड़ा मौका मिला 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों में, लेकिन सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिली।
1: हो जाए इनकी फिल्म का एक और गीत।

फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपर हिट गाना रहा। इसमें इनके स्टेप्स लोगों को बहुत पसंद आए और साथ ही साथ इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफेद जूता उनके ट्रेडमार्क बन गए। इसके बाद कारवां और हमजोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने गानों पर डांस किया और इनके इस डांस की वजह से बॉलीवुड में उन्हें जंपिंग जैक के नाम से जाना जाने लगा। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

जितेंद्र ने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। इनके अलावा कुछ और ही कलाकार होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में फिल्मों में काम किया। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ भी कई फिल्में की। लीजिए पेशे खिदमत है उनकी फिल्म का एक और गीत।

जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्मों में भी काम किया जिनके गाने सुपर हिट रहे। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है उनके ये सुपरहिट गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: दोस्तों, आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम। गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो शायर हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर अफरोज आलम साहब, जो कुवैत से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई, आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और इस वक्त मैं कुवैत से आपके साथ प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ। मुझे खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में आपके साथ बात करके।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को शुरू करते हुए डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक छोटा सा बहुत ही मासूम सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिससे हमारे सुनने वाले आपको थोड़ा सा और बेहतर जान सकें कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे।
1: सर, बचपन में तो मैं चूंकि एक डॉक्टर का बेटा हूं और घर में जो हमारा घर है वो नीचे हमारे पापा की क्लिनिक होती थी और ऊपर हम लोग रहते थे
0: जी।
1: तो जाहिर है डॉक्टर को देखते हुए डॉक्टर ही बनना चाहते थे
0: जी।
1: लेकिन इत्तेफाक से वो मेडिकल के डॉक्टर नहीं हुए, ये साहित्य और अदब के डॉक्टर हो गए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: रियली अगर इस तरह से कुछ देखने और कुछ बनने की अगर ख्वाहिश रही तो रियली ये तो प्रोफेशनल वे में मैंने अभी कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था
0: जी।
1: असल में बचपन एक ऐसी चीज है समीर भाई
0: जी,
1: कि जिसमें हर कुछ धुंधला धुंधला सा रहता है
0: जी।
1: इंसान की अपनी जो मनोवृत्ति होती है ना, इंसान की अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं
0: जी,
1: ये ख्वाहिशें भी बदलती रहती हैं। जैसे कि किसी बड़े आदमी को आपने देखा तो आप बड़ा आदमी बनने की कोशिश करते हैं। आपने अगर अच्छे शायर को देखा तो आप उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं। या ये कभी ऐसा होता है कि अब आपके घर वाले चाहते हैं कि आप ये बने तो फिर आप उनके लिए काम करने लगते हैं। ये बचपन में कंस्टेंट आपका नहीं होना, ये बहुत देर तक ये चलता रहता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था लेकिन मैं वो उस लाइन में नहीं कामयाब हो सका, क्योंकि आपको पता है कि अपने यहाँ जो मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। तो शायद उस लाइन में मैं नहीं कामयाब हो सका। और फिर उसके बाद शायर बनने की जो लिखने पढ़ने की जो ख्वाहिशें तो नहीं, बल्कि मैं इसे मैं ये कहूंगा कि भाई ये ऑटोमेटिक यानी कोई हमारी प्लानिंग के तहत नहीं था। मैं 1988 में जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था तो उस वक्त हमने पैरोडी करना शुरू कर दिया था। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर बनने की ख्वाहिशें अपनी जगह, उसके लिए पढ़ाई करना अपनी जगह, बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा मैं तो वो बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन ये पैरोडी करना और ये लिखना ये साथ साथ चलता रहा। ये तो बहरहाल उसके बाद मैं उस जब मेडिकल नहीं कर सका तो फिर उस जमाने में नई चीज आई हुई थी, एक कंप्यूटर। आपने
0: जी,
1: अगर आपकी उम्र से थोड़ी सी ज्यादा है तो आपने उस वक्त देखा होगा कि कंप्यूटर जब आया 90s में अपने यहाँ, तो छोटे शहरों तक इसे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो उस वक्त हमने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही पीजीडी डीसीए में मैंने एडमिशन करवा लिया था और फिर कंप्यूटर्स में हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद एमबीए भी किया। तो एमबीए और कंप्यूटर तो उस वक्त नया आया हुआ था, चूंकि मेडिकल नहीं कर सके तो कुछ और बेहतर करने के लिए एमबीए किया, फिर ये सब हमारे प्रोफेशनल कोर्सेस होते गए। हाँ, कुछ बनने की जो बात आप कर रहे थे ये कंस्टेंट नहीं हो पाया, मैं यूं कह लीजिए कि हमें किसी को देख के कंस्टेंट हो वो नहीं हो पाया, कभी ये बनेंगे कभी वो बनेंगे, ये कंफ्यूजन जो है बहुत देर तक लगी रही।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बस यही मकसद था। तो आगे बढ़ते हुए अफरोज साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए और मेरे लिए भी अपनी एक गजल हमें सुनाएं।
1: बिल्कुल आपके ख्वाहिशों के एहतराम में मुझे गजल पढ़ना है और मैं जरूर आपके लिए गजल पेश करूंगा। और ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैं आपके रेडियो के साथ आपके सामईन के से मैं जुड़ रहा हूँ
0: जी।
1: और मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ भी अपनी टूटी फूटी चीजें आप लोगों के लिए पेश करूंगा आप यकीनन उसे पसंद करेंगे। तो आइए मैं अपने एक गजल के से अपनी बात शुरू करता हूँ। क्या मुझे इजाजत है कि मैं तरन्नुम से पढ़ूं या मैं तहत में?
0: बिल्कुल इजाजत, क्या साहब गुजारिश है, अगर आप तरन्नुम में पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा, मजा दुगना तिगना हो जाएगा। प्लीज प्लीज, प्लीज
1: शुक्रिया
0: इरशाद।
1: मैं आपको एक तरन्नुम से, एक मेरी सिग्नेचर गजल है, इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा कि मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आपकी रेडियो के जो हमारे हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए एक नई चीज होगी। हालांकि मेरी सिग्नेचर गजल है, कुछ दोस्तों ने इसे फेसबुक ग्रुप पे और यूट्यूब पे भी सुना ही होगा
0: जी,
1: फिर भी मैं आप पेश करूंगा
0: जी। इरशाद स्वागत है।
1: मतला हाजिर कर रहा हूं
0: जी।
1: अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता, अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता।

0: सोखन होता मैं सलीके से जो रोता तो सुखनवर होता
1: बहुत खूब,
0: मैं सलीके से
1: वाह
0: जो रोता तो सुखनवर होता। शेर सुनिए समीर भाई,
1: उम्मीद
0: है कि आपको
1: जी, जी।
0: बहुत पसंद आएगा और हमारे तमाम श्रोता उनको, और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा जो इस वक्त खामोशी से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनकी बदौलत ही हम सब यहाँ पे प्रोग्राम को कर पाते।
1: बहुत खूब जी।
0: दश्त तन्हाई में ये उंगलियां कुछ देर अपनी
1: क्या बात है,

0: डुबोता तो सुखनवर
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत
0: खूने दिल में जो डुबोता तो सुखनवर होता। ये शेर शुक्रिया आपने पसंद किया। मैं अगला शेर पे आप लुत्फ लें, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आपको अच्छी लगेगी, अच्छा लगेगा।
1: बहुत खूब जी, प्लीज इरशाद।
0: देर तक चांदनी साहिल पे थी रक्सा,
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब।
0: उन्नत का लुत्फ लीजिए
1: जी।
0: देर तक चांदनी साहिल पे थी रक्सा अफसोस, मैं वही झील पे होता तो सुखनवर होता, मैं वही झील पे

0: रख साथी झड़ी अशकों की।
1: वाह,
0: चश्मे हैरत में भी रख साथी झड़ी अशकों की। अपने दामन को भिगोता तो सुखनवर होता।
1: क्या बात है,
0: अपने दामन को
1: क्या बात है, बहुत
0: भिगोता तो सुखनवर होता। तो मैं ये गजल थोड़ी लंबी है, तो मैं समझता हूँ कि जो इसके दो तीन और जो इसके जो अहम शेर हैं वो मैं पेश करूंगा।
1: जी जी जी इरशाद,
0: लिमिटेशन भी है टाइम का, और मुझे एहसास है कि आपको मैं बहुत ज्यादा लंबा मामला ना करूं। बस शेर ये समाप्त फरमाएं, फिर दो शेर के बाद में माइक आपके पास।
2: मेरे एहसास ने सीने से निचोड़ा है अरक,
1: क्या बात है,
0: चाहूंगा तुम्हें
1: क्या बात है। जी जी जी
2: मेरे सांस ने सीने से निचोड़ा है अरक, इसको लफ्जों में पिरोता तो सुखनवर होता। इसको लफ्जों में पिरोता तो सुखनवर होता। वादिये हाप्स में उखड़ी थी फिजा की सांसें, वादिये हाप्स में उखड़ी थी फिजा की सांसें, इसको लफ्जों में
0: माफ कीजिएगा
1: जी
0: वादी।

0: बदल डाला है।
1: क्या बात है,

0: बदल डाला है, मैं जरा देर ना सोता तो सुखनवर होता।
1: बहुत खूब।

0: उसके ऊपर वो ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उसी पर खेलते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गजल साहब। आपके आपकी जो आवाज में वो जो एक कंपन है, जो आपकी आवाज में जो लरज है, वो बहुत बहुत नेचुरल है, जो मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर सिंगर्स की आवाज में होती है, जो लरज सुनाई देती है।
1: क्या पता मैं सिंगर ना बन सका, जो कि अभी आपने पहले कुछ बनने की बात की।
0: तो एक बार
1: शायद आप पहले मिले होते तो हम सिंगर की तरफ भी पड़ गए।
0: तो अभी कौन सी देर हो गई साहब, अभी कौन सी देर हो गई, शुरू कर लीजिए, गजल गाना शुरू कर लीजिए। तरन्नम आपके पास ऑलरेडी है, आप अपने गजलों की जो जो म्यूजिक है उसको आप खुद ही तरन्नुम में कंपोज कर रहे हैं, तो बस सिर्फ एक जरा सी प्रैक्टिस करने की बात है, शुरुआत हो सकती है अगर आप चाहें तो। बहुत खूब,
1: जब जागे तब सवेरा।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और कई जगह पर मैंने पढ़ा है कि अगर आप किसी भी उम्र में सीखना शुरू करते हैं तो आप खुद एक बच्चे हो जाते हैं, तो उम्र फिर कभी आड़े आती नहीं। आप एक तरीके से बड़ा होना, यानी कि उम्र में बड़ा होना रुक जाता है, आप रिजुवनेट हो जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब,
1: शुक्रिया।
0: तो अफरोज साहब, मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
1: मुझे अचानक इस वक्त एक गजल मोमिन खान मोमिन की याद आ रही है
0: जी।
1: अगर आप इसे अगर आप प्ले करें तो मैं समझता हूँ कि आपके श्रोता भी खुश होंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा
0: जी।
1: रोया करेंगे आप भी पहरो इसी तरह।
0: ओहो, क्या बात है, बिल्कुल साहब बिल्कुल।
1: मोमिन खान मोमिन की गजल है, रोया करेंगे आप भी पहरो इसी तरह। बहुत बहुत खूबसूरती से इसको गुलाम अली ने गाया है
0: जी।
1: जरूर आप इसे।
0: बिल्कुल साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारी सी गजल, गुलाम अली साहब की गाई हुई और अफरोज साहब के हुक्म पर।

0: सादा गाना मैं सुनाऊंगा बस यार से मूड आ गया इसने सादा गाना मैं इंशाल्लाह सादे गाने में सुनाऊंगा फिल्मी भी तू
1: ना जा मत बीबिया को बुलाने लग पड़ा

0: अफरोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बस एक छोटा सा सवाल, फिर आपकी एक गजल के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि फर्ज कीजिए आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला जिन कहीं से मिल जाए तो क्या तीन इच्छाएं मांगेंगे आप?
1: बहुत अभी तो तत्काल में मैं आपसे मिलना चाहूंगा नागपुर आके।
0: बहुत शुक्रिया सर।
1: इंसान की ख्वाहिशें अनंत होती हैं
0: जी,
1: और आपसे मिलना भी एक कि कोई जिन मिल जाए और हमें कुवैत से नागपुर ले चले,
0: क्या बात है,
1: और आपसे मुलाकात करवाए तो मैं समझता हूँ कि ये जिन के ऊपर मेहरबानी होगी और मेरी खुशकिस्मती।
0: वाह, ये तो जिन

0: इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी अहमियत मेरे से ज्यादा है, तो एक गजल हमें और सुनाएं।
1: बिल्कुल, आजकल जो माहौल बना हुआ है
0: जी,
1: उस हवाले से चंद अशार आपको मैं पेश करता हूं एक गजल के।
0: इरशाद।
1: जगा जुनून को जरा, ये गजल तरन्नुम से मजा नहीं देगी।
0: जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं जी।
1: जगा जुनून को जरा, नक्शे मुकद्दर खींच। जगा जुनून को जरा, नक्शे मुकद्दर खींच, नई सदी को नई करबला से बाहर खींच।
0: ओहो क्या बात है।
1: जगा जुनून को जरा, नक्शे मुकद्दर खींच, नई सदी को नई करबला से बाहर खींच। मैं ज़हनी तौर पे आवारा होता जाता
0: हूं। ओहो।
1: मैं ज़हनी तौर पे आवारा होता जाता हूं, मेरे शऊर मुझे अपने हद के अंदर खींच। मैं ज़हनी तौर पे आवारा होता जाता हूं
0: जी,
1: मैं ज़हनी तौर पे आवारा होता जाता हूं, मेरे शऊर मुझे अपने हद के अंदर खींच। और शेर समाज फरमाए समीर भाई
0: कि
1: नई जमीन लहू का खराज लेती है
0: जी,
1: नई जमीन लहू का खराज लेती है, दयारे गैर में भी खुशनुमा सा मंजर खींच। नई जमीन लहू का खराज लेती है, दयारे गैर में भी खुशनुमा सा मंजर खींच। और शेर है समात फरमाए कि नई जमीन लहू का खराज लेती है, दयारे गैर में भी खुशनुमा सा मंजर खींच, अभी सितारों में बाकी है जिंदगी की रमक
0: जी,
1: अभी सितारों में बाकी है जिंदगी की रमक, कुछ और देर जरा नरम गर्म चादर खींच।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: अभी सितारों में बाकी है जिंदगी की रमक
0: जी,
1: कुछ और देर जरा नरम गर्म चादर खींच। शेर मक्ता समाज फरमाए छोटी सी गजल की है कि चार पांच देर थे इसके कि वजूदे शहर तो जंगल में ढल चुका आलम।
0: ओ जी,
1: वजूदे शहर तो जंगल में ढल चुका आलम, अब इस जगह से मुझे जानिबे समंदर खींच। जगा जुनू को जरा, नक्शे मुकद्दर खींच।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: सभी को नई करबला से बाहर खींच। बहुत शुक्रिया,
0: बहुत खूब, अरे वाह। मैं हमेशा इस बात को बहुत तहे दिल से मानता हूं और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने आप को कहने से रोक नहीं पाता हूं कि खासम खास शायर जो हैं वो लफ्जों के साथ, ऐसा लगता है जैसे वो लफ्जों के मेले में हों और घूम रहे हों और जितने लफ्ज हैं वो सब उनके यार दोस्त हैं उनके साथ।
1: ये सही कहा आपने, ये लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया कि असल में ये यार दोस्त,
0: उनके साथ उठना बैठना उनसे बातचीत करना और वो फिर यार दोस्त जो लफ्ज उनका जिस तरीके से एहतराम करते हैं, जिस तरीके से उनका साथ देते हैं शायरों का, वो बड़ी खूबसूरत चीज होती है देखने वाली। कहीं पढ़ा भी था मैंने कि लैंग्वेज इज ए वेरी पावरफुल वेपन, एक बहुत बहुत ताकतवर हथियार होता है भाषा।
1: बिल्कुल, वजह से कलम से तलवार से ज्यादा तेज जो है वो कलम
0: मानी जाती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत खूब बहुत खूब। तो सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए आपके पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम सुनवा सकें।
1: आइए, अब तो मेरे ख्याल से मेहती हसन हमारे फेवरेट,
0: क्या बात है,
1: गजल सिंगर
0: जी,
1: और उनसे रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए।
0: ओहो,
1: उम्मीद फाजली की गजल है, जो भारत में नीरा फाजली थे
0: जी जी, उनके जी
1: भाई
0: जी।
1: उम्मीद फाजली साहब, ये उनकी गजल है
0: जी।
1: बहुत ही खूबसूरती से इसे मेहती हसन साहब ने गाया है
0: जी,
1: आप इसे जरूर प्ले करें और मुझे अच्छा लगे।
0: बिल्कुल साहब, आपका हुक्म सराखों पर। आइए दोस्तों सुनते हैं ये बहुत ही प्यारी सी गजल मेहती हसन साहब की सौंधी सौंधी सी आवाज में।

0: बहुत खूब। अफरोज साहब, आगे बढ़ते हुए दोबारा से एक बहुत ही छोटा सा सवाल और थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए, आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है? मतलब खाने में कोई डिश होगी?
1: मैं अभी पिछले दिन इंडिया गया था तो मेरी बेगम ने मुझसे पूछा कि भी खाने में क्या पसंद। मैंने उनको पास बुलाया, मैंने कहा कि आपको कितने साल हो गए मुझे साथ में, 20 साल तो हो ही गए
0: जी।
1: मैंने कहा आज तक मैंने कुछ कहा कि मैं नहीं खाता हूँ।
0: ओके ओके ओके ओके।
1: ओ
0: नहीं, खैर साहब जी।
1: तो मैं बहरहाल ये कुवैत में रहते हुए, कुवैत में रेस्टोरेंट्स बहुत है
0: जी।
1: यहाँ पे जब आएंगे ना, पूरे गल्फ में, बल्कि नॉट ओनली इन कुवैत, पर सिर्फ कुवैत में ही नहीं बल्कि दुबई भी जो लोग जाते हैं, खासतौर से आजकल दुबई का पर्यटन बहुत ज्यादा हो गया, लोग इंडिया तक एक कंटिन्यू आ रहे जा रहे हैं, तो सब कुछ देखते होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना, एक तो इसकी कई वजह है, बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे हर जगह पूरे गल्फ में, इसकी कई वजह है। पहली वजह तो ये है, यहाँ बैचलर्स बहुत हैं जो काम करने के लिए जो आए हैं ना।
0: जी जी जी जी जी।
1: वो 80% लोग जो है ना यहाँ अकेले रहते हैं, और वो चूंकि उन्हें ड्यूटी भी करनी होती है, फ्री भी कम होते हैं
0: जी।
1: और डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए हैं।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने जी, हाँ सही कहा।
1: तो जिस कंट्री से लोग आए हुए हैं, उन लोगों के मिजाज के हिसाब से उन्हीं कंट्री के लोगों ने अपने रेस्टोरेंट भी खोल रखे हैं यहाँ पे। जैसे बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, अरबी रेस्टोरेंट में, लेबनीज रेस्टोरेंट, तुर्की रेस्टोरेंट, यमनी खाने, और ये पूरी दुनिया, इवन चाइनीज रेस्टोरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के, यानी ओरिजिनल चाइनीज, जिसको हम लोग इंडिया में जो चाइनीज डिशेज आप देखते हैं उसमें, और थोड़ा सा चाइना के जो स्पेशल रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, उनमें बहुत से जापानीज रेस्टोरेंट। हालांकि सबसे महंगा रेस्टोरेंट जो है, ये भी मैं आपके दर्शकों को बताते चलूँ कि खाने पीने के मामले में जो जापानीज रेस्टोरेंट्स है वो सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स होते हैं।
0: अच्छा सर,
1: अगर वहाँ पे क्या किसी भी जापानीज रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। इंडिया में भी जो जापानीज रेस्टोरेंट पर मेरा अपना, मैं आपको एक चीज बताते चलूं जो आपने मुझसे नहीं पूछा और पूछते भी कैसे आपको। मैं जब 99 में कुवैत में आया था तो मैं एक परफ्यूम कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था
0: जी,
1: क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो उससे पहले मैं सऊदी अरब में था, वहां कार का सेल्समैन था। तो खैर उससे मैं बढ़ते हुए परफ्यूम की ही कंपनियों में काम करते हुए मैं सीईओ की पोजीशन तक काम किया। तो इसकी वजह से ना मेरा अभी भी इसी तरीके की एक जिम्मेदारी में मैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम ऑफलाइन बात कर रहे थे
0: जी,
1: तो मैं
0: जी
1: बता रहा था डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स में जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ। इंडिया में भी ताज वगैरह मेरे लिए रेगुलर रेस्टोरेंट है, मैं रेगुलर आना चाहता हूँ वहाँ पे बड़े होटलों में करना। तो इससे तजुर्बे के बुनियाद में कह रहा हूँ, जितने भी रेस्टोरेंट्स में हमने अब तक खाने खाए हैं या अभी भी जाते हैं, तो उसमें सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जापानीज रेस्टोरेंट्स होते हैं। और सबसे अगर सस्ता रेस्टोरेंट्स होता है तो वो अपने इंडिया पाकिस्तान का जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे कंपेरेटिवली आपको, इवन आप ताज का कभी आप वेबसाइट पे जाके उनका मेनू डाउनलोड करें तो आपको आइडिया होगा कि ताज बॉम्बे में कि उनके जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं उससे कंपेरेटिवली जापानीज रेस्टोरेंट कितने महंगे हैं और दूसरे रेस्टोरेंट्स कितने महंगे हैं। तो खाने के लिए जो आपने कहा, तो हम लोग यूं कहिए कि एक यात्री के तौर पे, एक टूरिस्ट के तौर पे, एक बैचलर लाइफ गुजारने के हवाले से मैं अकेले रहने के शुरू से रहा मैं यहाँ पे, बच्चे मेरे जो है वो पढ़ाई की वजह से इधर उधर रहते अभी भी रहे हैं, तो मैं अकेले इधर उधर रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ जो है ना बहुत टाइप के रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जाहिर है डिफरेंट टाइप के खाने भी मिलेंगे
0: ऑफ कोर्स।
1: तो आपको मेरा वजन जो आप देखेंगे उससे आपको अंदाजा हो भी जाएगा कि मैं कह रहा हूँ सच ही कह रहा हूँ।
0: क्या कहा है साहब, क्या कहा है, बहुत खूब। ओके ओके, फैबुलस सर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अफरोज साहब, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए दोबारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल हमारे लिए सुनाएं।
1: बिल्कुल, एक गजल और मैं आपको तरन्नुम से
0: जी
1: सुनाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं इजाजत भी इसलिए चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक दूसरे प्रोग्राम के लिए भी रिकॉर्ड करना था
0: जी जी जी,
1: वहां का भी टाइम हो जाएगा, तो मुझे इसके लिए माजरत खा हूं, माफी चाहता हूं। मैं आपका प्रोग्राम मुझे छोड़ के उठने का दिल नहीं है, लेकिन ये गजल जरूर अब मैं पढ़ूंगा, और प्लीज इसे
0: प्लीज
1: मुझे वो फनकाराना नखरा में नहीं शुमार कीजिएगा।
0: नहीं नहीं साहब, अरे ये गुस्ताखी नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इरशाद प्लीज सुनाइए।
1: शेर सुनिए मतलब
0: इरशाद।
1: जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं एक परफ्यूम कंपनी में काम करता हूँ
0: जी,
1: नौकरी करता हूँ। तो परफ्यूम एक्चुअली ना, परफ्यूम को हम लोग उर्दू या हिंदी में क्या कहते हैं?
0: या तो इत्र कहते हैं साहब, इत्र।
1: हाँ, हिंदी में सुगंधी वगैरह भी कहते हैं या उर्दू में इत्र कहते हैं
0: जी।
1: असल में ना वो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप कतर को कत्र कह रहे थे ना,
0: जी जी जी,
1: सेम उसी तरीके का एक ये मामला है। ये असल में लफ्ज अरबी का अतर है।
0: अतर, बिल्कुल सही फरमाया आपने।
1: अब अतर से हम लोग इतर कहने लगे, फिर इतर से वो, क्योंकि तीन हर्फी ये लफ्ज है तो उसको इत्र के भी कहने लगे। अब अपने यहाँ वो इत्र भी चलता है कहते हैं।
0: जी जी जी जी जी।
1: तो इत्र का काम करने वालों को, इत्र बेचने वालों को, इत्र बनाने वालों को, परफ्यूमर को उर्दू में कहते हैं अत्तार।
0: अत्तार
1: जी।
0: अरे वाह जी।
1: मीर का एक शेर है
0: जी,
1: अब पता नहीं ये आपके श्रोता के लिए सही है कि नहीं, अरे चाहे तो इसे काट दीजिए।
0: अरे नहीं सर।
1: मीर क्या सादा है
0: जे,
1: बीमार हुए जिसके सबब
0: जे,
1: उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
1: असल में पुराने जमाने में जो ये हकीम होते थे ना, ये हाँ जिनके हाँ पास है, एक तो हकीम होते थे जो प्रिस्क्राइब करते थे आपको दवा
0: जी हाँ,
1: और एक वो पंसारी होते थे जो बेचते थे दवाओं को और अतर को और ये डिफरेंट टाइप की चीजों को
0: बना के बेचते थे,
1: जिसको पंसारी की दुकान हम लोग कहते
0: जी
1: थे।
0: हाँ, बिल्कुल
1: उनको अत्तार कहा जाता था असल में, वो दुकानदार को
0: जी,
1: अतर का काम करने वाले।
0: ओके,
1: अब शेर सुनिए। तो मैं इसलिए ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब पढ़ना है।
0: जी जी जी जी, प्लीज।
1: तो एक बार हमने अतार की वजह से, मैंने एक बार एक गजल में, एक बार मैंने एक शेर कहा कि गुफ्तगू उर्दू में करता है तो यूं लगता है
0: जी,
1: कोई खुशबू किसी सांचे में ढली हो जैसे।
0: ओ हो, क्या कहा है साहब।
1: हाय उस शोख की
0: जी।
1: बहरहाल ये जो शेर अभी मैंने पढ़ा कि कोई खुशबू किसी सांचे में ढली हो जैसे, इस पे हमको किसी ने कहा कि इस खुशबू ढलती नहीं है, उड़ती है। तो मैंने उनको जवाब में कहा कि मैं अत्तार हूं, खुशबू के बारे में आपसे बेहतर जानता हूं। खुशबू ढलती है, आपने खुशबू को फ्रेग्रेंट देखा है, हमने लिक्विड भी देखा है, सॉलिड भी देखा।
0: जी जी जी जी।
1: सुनिए। अत्तार के मस्कन में
0: जी,
1: ये कैसी उदासी है, अत्तार के मस्कन में ये कैसी उदासी है।
0: क्या बात है।
1: सोने के मुकाबिल में
0: जी,
1: हर संत ही मिट्टी है।
0: वाह वाह वाह।
1: सोने के मुकाबिल में हर संत ही मिट्टी है। शेर समाप्त फरमाए।
0: क्या बात है जी। अच्छा,
1: दुआया शेर है। तू साहिब कुदरत है, तू अपना करम रखना।
0: बहुत खूब।
1: तू साहिब

0: सहरा की तरफ ओ माइल,
1: जी
0: हालात की कश्ती है, सहरा
1: हा, क्या बात है।
0: की तरफ ओ माइल, हालात की कश्ती है।
1: ओहो, क्या बात है।
0: समीर भाई, अगला शेर मैं पेश करूंगा, इसके काफिये पे आपसे बात चाहूंगा,
1: जी इरशाद।
0: और मैं आपको कहूंगा कि एक बहुत ही खुश्क लफ्ज से एक गजल का शेर बनाने की कोशिश कर रहा हूं।
1: जी
0: रोशन है दरख्शां है, ये दौर बज़ाहिर
1: ओहो, क्या बात है।
0: रोशन है दरख्शां है, ये

0: वाह वाह।
1: लम्हों के ताकुब में सदियों की धरोहर थी
0: जी।
2: ये गजल जिस वक्त मैं कह रहा था, उस वक्त अमरीकी फौजें जो हैं वो सीरिया के एक शहर अलीपो पे बमबारी कर रही थी। और वो जो शहर है वो उसको वर्ल्ड हेरिटेज में उसे यूनेस्को ने शामिल कर लिया था। तो एक दुनिया की कदीम तरीन बस्तियों में से थी, जो इसका आबादी के लिहाज से वो जब जिस वक्त बॉम्बिंग हो रही थी तब 1.5 करोड़ की आबादी थी, कभी वो छोटी सी बस्ती थी वो।
0: ओह गॉड।
2: तो इस मामले को मुझे इसलिए शेर में आया कि उस वक्त इंडिया के एक चैनल पे एक सीरियन जर्नलिस्ट कह रहा था कि अमेरिका उस जगहों पे बॉम्बिंग कर रहा है जो हमारे लिए धरोहर की तरह है। लम्हों के ताकुब में सदियों की धरोहर थी, अफसोस के दामन में गुरबत की ये बस्ती है।
0: वाह क्या बात है।
2: अफसोस के दामन में गुरबत की ये बस्ती है, वो साहिब मसनद है
0: जी,
2: इससे उन्हें क्या मतलब,

0: ओहो क्या बात है।
1: जज्बों के दरीचों से जारी कोई नदी है।
0: बहुत
1: एक शेर और समाज समय पर उसके बाद में एक हर ख्वाब

0: गर्मी है।
1: क्या बात है, बहुत
0: हर सुबह के माते बाजार की गर्मी है। मैं पेश कर रहा हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब इरशाद।
0: कुछ और मसाइल से उलझेगा भी आलम,
1: जी
0: कुछ और मसाइल से उलझेगा भी आलम, हर साहिब आलम पे
1: क्या बात है
0: मस्ती अभी छाई है।
1: वाह,
0: हर साहिब आलम पे मस्ती अभी छाई है, सहरा की तरफ हो मायल, आलामत की कश्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई, मैं आपके तमाम श्रोताओं को, आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, और जिनके लिए हम लोग करते हैं, मुझे और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ रहना हूँ।
1: तो दोस्तों, ये था गजलों के साथ का प्रोग्राम। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, आप शायर हैं, गजलें लिखते हैं, नज्म लिखते हैं, या आप किसी ऐसे हजरात को जानते हैं जो गजलें और नज्मों में अपनी कला को निखारते हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमारे स्टेशन पर संपर्क करें, हमें बेहद खुशी होगी। दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजी वर्षा
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
1: लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और खास तौर पर उन छोटे छोटे सेगमेंटों पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो गया है आज के इस जमाने में, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि पथरीली इलाका, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पथरीला इलाका है और ऐसे में किसानों को खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है।
1: बिल्कुल, तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान को लेकर रेडियो टांटिया भील आप सभी के लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
2: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम तीन

0: साथियों, अभी आपने सुना इस व्हील गाने को और आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर
1: और इसमें जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मिश्रित खेती को कर सकते हैं और किस तरीके से मिश्रित खेती से लाभ कमा सकते हैं। यदि हमारे किसान साथी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान साथियों की आय में जरूर वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे झाबुआ जिले में जो KBK बना हुआ है या फिर कृषि विभाग की जो ऑफिस है वहां पर जाकर हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से सलाह और संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देरी करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम में मिश्रित खेती के बारे में।
2: कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करे, जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं, खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा।

0: 90.8 FM આપણો રેડિયો આપણી વાતે. रेडियो टांटिया भील सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं. मैं हूं आपके साथ आपकी आरजी वर्षा.
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष. और इस वक्त सुन रहे हैं आप झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM.
0: जी हां साथियों, और अभी हम सुन रहे थे मिश्रित खेती के बारे में. आगे हम आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं और ले चलते हैं आपको कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं.
1: तो आइए दूसरा कंपोनेंट हम सुनते हैं और इसमें जानते हैं पशुपालन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का रख रखाव और साथ साथ में मई माह का कैलेंडर पर भी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे. और इसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो हमारे गाय भैंस हैं उसका मई माह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, किस तरीके से उनका देख रेख कर सकते हैं. तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को.
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है. देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है. अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है. उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है. इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है जो कि इसका उद्गम स्थान है. गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है. लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है. गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है. इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नज़र से. गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित, इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है. प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है. गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है. इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती. देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है. आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है. समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे.
0: साथियों, अभी आपने सुना इस रिपोर्ट को जिसमें हमें बताया गया कि पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम इनसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं. आगे आपको कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं अपने विषय विशेषज्ञ से और ज्यादा जानकारी इस विषय को लेकर. लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं.
1: बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
0: और आपके आरजे वर्षा के साथ. सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी.

Yeah.

0: शराब मारे थोड़ा सा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बोलते हैं गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है। जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़िया ग्याबन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है। साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है। इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है खासकर राजस्थान की जलवायु है उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं। साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ ही इनके जो ग्याबन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गाय को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गाय को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है। और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है। गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है। साथ ही उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है।
3: तो किसान भाइयों बहनों आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
4: मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में

0: मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं की देखरेख करना चाहिए, कौन सी नस्ल हो हमारे किसान पालना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कार्यक्रम में आगे हम सुनते हैं सफल किसान की कहानी। लेकिन सफल किसान की कहानी से सुनने से पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। अपना रेडियो अपनी बात है।
3: आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दुर्गामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है। इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती है और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं।
4: मैं किसान हूं, पारंपरिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है वो जैविक खेती के बारे में सुना ऐसे लोगों से कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बजाज ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत घन जीवामृत 10 पनियर वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ, उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत घन जीवामृत ये सब डाल के बना रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है और उनकी तरफ से हमारे को क्या प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। धीरे धीरे ड्रिप इरिग्रेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला।
5: राजस्थान में पानी की कमी है,
4: राजस्थान में ऐसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है तो पानी की जो क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से। और फिर क्या वो बोला कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से गोमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत घन जीवामृत 10 पर्णियारक वगैरह सब बनाते हैं और तुरंत तुरंत खाद जो अपने हुमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं और इसमें बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है,
5: नई
4: तकनीक और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है।
3: बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई है। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है।
4: सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल लेने से बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी हिसाब से जैविक रासायनिक होता है 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और अपने क्या तुरंत बिक जाते हैं। जब माल भी गिराएगी अपने कहते यार आपकी चीज बहुत अच्छी है, हमको आपका माल ही चाहिए, उसी हिसाब से वो भी ले देते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, 1-2 रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं ना अपने आप। किसानों को सलाह ये देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे भी करना है, इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपने स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है तो जैविक खेती अपनाओ और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा।
3: बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
1: साथियों, अभी आपने सुना सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी आय को दोगुना किया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
2: और साथियों, एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम जो लेकर आते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें जरूरी हैं और हमारे किसान साथियों के लिए आय को दोगुना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। खासतौर पर उन किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास थोड़ी जमीन है और वो भी पथरीली इलाका उनके पास है और पानी रुकता नहीं है। तो सबसे पहले उनको हम बताने देना चाहते हैं कि अब आने वाले बरसात के दिनों में हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा झाबुआ जिले में समस्या है पानी को लेकर, तो किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, खेत का पानी खेत में कर सकते हैं, सरकार की स्कीम्स का सरकार की योजना का फायदा लेकर हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में ऐसी खेती को हम विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक पद्धति से खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, उत्पादन अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे किसान साथी जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में केवीके भी है, वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं।
1: तो साथियों, जी हाँ साथियों, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा दिए गए नंबर पर फोन करके हमें जरूर बताएं। अब इस कार्यक्रम से जाने के दीजिए हमें अनुमति, यानी कि आपकी आरजे वर्षा
2: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
1: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को।

अपना अपनी लड़ाई लड़वा मत। मैंने जान थी मारा भाइयों मारी बहनों मारा काका मारी काकियों।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जुन मनीष आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान भाइयों कैसे हैं? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमारे किसान साथी अब खेती किसानी से

फुर्सत हो गए हैं, क्योंकि गेहूं का जो सीजन था उन्होंने गेहूं अपने घर में बिल्कुल उगा के रख लिया है। अब हमारे किसान साथी बिल्कुल फ्री होंगे और अपने रिश्तेदारियों में जा रहे होंगे, आ रहे होंगे और यहाँ पर गप सड़ापा हो रही होगी। तो अपने किसान साथियों से कहना चाहते हैं कि आने वाले फसल की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा किसान साथी कभी भी फ्री नहीं रहता है। और साथियों हमें ध्यान रखना है कि इस बार हमें कुछ हटके करना है, क्योंकि जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे सभी से तब तक हमारी पहचान कैसे बनेगी। जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तब तक लोग कैसे पहचानेंगे कि ये किसान उस गांव का रहने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस बार हमें कुछ नया करना है और कुछ नई फसल उत्पादन हमें करना है। तो आप सुनिए हमारा कार्यक्रम खेती बाड़ी, क्योंकि रेडियो टांटिया भी 90.8 FM पर आप खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और श्रोता साथियों हम बता देना चाहते हैं कि हमारे किसान साथियों के लिए हम नई नई पद्धति और नई नई तकनीकी से हमारे किसान साथी कैसे खेती कर सकते हैं उस पर हम एक नजर डालते हैं। और साथ साथ में साथियों हमने कुछ दिनों से हम अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में खेती किसानी में हमारे किसान साथी किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उस पर हम नजर डालते हैं और अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं। और आज चूंकि हमने विषय चुना है गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, कुछ नई पद्धति से अपनाएं। और हमने विषय सोचा है कि ग्रीन हाउस में कैसे खेती करें, ये हमारे किसान साथियों के लिए एक अलग विषय होगा, लेकिन इसकी जानकारी आपको होना चाहिए और हमें अपने खेतों में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा झाबुआ जिला चूंकि हमारे खेती किसानी के लिए सही नहीं है, पथरीला इलाका है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद हमारे किसान साथी कुछ ना कुछ उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। आजीविका को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा कि किस तरीके से हम खेती के साथ साथ बागवानी भी कर सकते हैं, खेती के साथ साथ हम नर्सरी भी लगा सकते हैं, खेती के साथ साथ हम आजीविका को चलाने के लिए कुछ छोटे छोटे कुटीर उद्योग यानी व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। तो आज के हमारे जो कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज ग्रीन हाउस में किस तरीके से खेती कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, यदि हम फसल बोते हैं तो उसको पानी बार बार देना पड़ता है, तो ग्रीन हाउस आकर कर क्या है, किस तरीके से खेती होती है, इस पर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है। तो आइए सुनते हैं, लेकिन सुनने के पहले हम लेते हैं एक संगीतमय विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो भील टांटिया 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप?
1: अब भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ।
0: जब से हमारे क्षेत्र के किसानों ने उन्नत खेती को अपनाना चालू कर दिया है, तब से तो बाहर आ गई है। और वाकई में लगता ऐसा है कि विषय को ध्यान से सुन रहे हैं सभी किसान भाई, और उन्नतशील प्रजातियों को भी ला रहे हैं अपने खेत में लगाने के लिए, क्योंकि अब उनका विश्वास जाग चुका है टिकाऊ खेती की तरफ। खैर किसान भाइयों, विचार और विषय सुनने के लिए हम दौड़ लगाते हैं अपने खेतों में और बात करते हैं अपने किसान भाइयों से, क्या सोचते हैं वो, जिससे कि हमें उनकी धारणा का पता चले, यानी आज और हम में।
2: मैं विवेक यादव, मैं एक मध्यवर्गीय सुभाष नगर किसान हूँ। भैया, अगर हम अपनी नई तकनीकों को आज हम अपने खेतों में लगाते हैं तो भैया लागत आती है, पर यह लागत एक बार की है, जिससे हम भविष्य में काफी समय तक इससे लाभ ले सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया लगाओ एक बार और काटो बार बार।
3: मैं सुंदरदास, जगदीशपुर का किसान। हमारे ख्याल से आज स्थिति को देखते हुए नई तकनीकों का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग पिछड़ जाएंगे और सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, नई तकनीक को अपनाना थोड़ा महंगा जरूर है।
4: मैं जवाहर नगर का एक छोटा सा किसान हूँ, मेरा नाम अभिषेक है। भैया, यह बात तो सही है कि खेती में अगर हम वैज्ञानिक तकनीक लगाएं तो इससे थोड़ा खर्चा तो आता है, पर इससे आने वाले समय में बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले पंप सेट लगाया था और मैं अभी तक उससे सिंचाई कर रहा हूँ।
0: किसान भाइयों की बात को ध्यान से सुनते हुए मुझे एक धारणा का पता चला भाइयों, कि हमारे सभी किसान भाई सोचते हैं कि भाई अगर हम उन्नतशील खेती करना चाह रहे हैं और नई नई जो तकनीकें हमें जो विशेषज्ञ बताते हैं उनको अपनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए निवेश करना बड़ा जरूरी है, और निवेश भी मामूली नहीं, बड़ा निवेश है किसान भाइयों। तो इस निवेश को किसान कैसे देखे, क्या खर्चा है उसके लिए, या कि एक कमाई का नया साधन? और इसी बात से एक विषय जो सामने आया है कि निवेश एक बार, लाभ बार बार, यानी एक बार निवेश करने के बाद आप लाभ बार बार कैसे लें, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों की धारणा को और मजबूती से समझते हैं और चलते हैं बातों बातों में, जो कि है एक लघु नाटिका।
5: दिशा में पकड़ो, उधर से पकड़ो, चलो। हाँ, रुको रुको रुको रुको रुको, तुम रुको रुको, मैं पहले उतरता हूँ। हाँ हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक,
6: आराम से आराम से।
7: अरे घर में शादी है क्या? राम राम
5: राम राम, तुम हटो यार जरा,
6: एक बार का कह रहे हो कल्लू भैया?
7: घर, मैंने कहा घर में किसी की शादी है क्या भैया?
5: शादी से तुम्हारा मतलब?
7: अरे इतना सारा सामान लेकर आए हो, शादी का ही लग रहा है।
6: शादी का? अरे कल्लू, ये जो पाइप है ये सामियाना का पाइप थोड़े ना है। ऊपर से ये बताओ, जो सामियाना कहीं पन्नी का लगता है क्या? है,
7: ये तो बात सही कह रहे हो भैया, लेकिन है क्या ये बवाल?
5: अरे भाई कल्लू, कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या, हम लोग अच्छी खेती चाहते हैं, इसके लिए पाली हाउस लगा रहे हैं।
6: हाँ, और तुम्हें पिछली बार की बात याद है, संगम भैया कह रहे थे कि हम लोगों को टिकाऊ खेती करनी चाहिए, और टिकाऊ खेती के लिए अगर हम पॉली हाउस में खेती करेंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
7: इसके लिए पैसा तो बहुत खर्च किया दिलशान भैया।
5: हाँ, थोड़ा सा खर्चा हुआ है, लेकिन भाई वो सब बराबर हो जाएगा, क्यों दिलशान भाई?
6: बिल्कुल भाई, आज हम पैसा लगा रहे हैं, कल पैसा फिर आएगा और परसों फिर आएगा।
7: इससे अच्छा तो आप अपने पान की दुकान खोल लेते, उससे तो रोज रोज आमदनी आती।
5: तुम भी यार कल्लू, हद है
6: भैया। हम लोग हैं किसान, हम लोग खेती करेंगे तभी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। पान और बीड़ी सुरती बेच के कुछ नहीं होने का है।
5: और वैसे भी कल्लू, छोटा बिजनेस नहीं, बड़ा बिजनेस करो।
6: और आज की नहीं, आगे की सोचो
8: भाई। पॉली हाउस में लगाओ लागत एक बार और कमाओ बार बार।
6: संगम भैया राम राम।
8: राम राम भैया राम राम।
5: संगम भैया कैसे हैं?
8: मैं तो भैया आप ही जैसा हूँ, एकदम टकाटक।
5: संगम भैया, यहाँ मैं और दिलशान भाई पॉली हाउस के लिए जो सामान था ले आए हैं। आप जरा देख लीजिए कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं। क्यों दिलशान भाई?
6: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संगम भैया, जिस दुकान पे आपने कहा था हमने सामान वहीं से लिया, इससे और दुकान से थोड़ा सस्ता ही पड़ा है।
7: संगम भैया, कितना भी सस्ता पड़ा हो लेकिन है तो महंगा ही।
8: अरे कल्लू भैया, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन आज तो जरूर ये महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में यही तो आपको बरकत दे के जाएगा। तब आपका जो पान का खोखा है ज्यादा महंगा महसूस होगा और ये पॉली हाउस बहुत ही सस्ता लगेगा।
6: बिल्कुल सही कह रहे हो संगम भैया। कल्लू भैया, आज हम ये पॉली हाउस लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि अगली बार इसको उखाड़ के बेचना पड़ेगा। एक बार ये लग गया तो सालों साल चलता है।
5: अरे दिलशान मियाँ, किसे समझा रहे हो? तुम तो जाओ कल्लू अपनी पान की दुकान खोलो और हम भी तुम्हारे वहाँ आएंगे 10 साल बाद पान खाने।
7: चलो पान वान भैया छोड़ो, ये बताओ इस पॉली हाउस जो लगा रहे हो उससे क्या क्या फायदे होंगे?
8: अरे भैया, पॉली हाउस में ऐसी फसलों का उत्पादन हो सकता है जो उस मौसम में बाजार में नहीं मिलती, और जो फसलें बाजार में नहीं उपलब्ध हों और वो फसलें तुम बाजार में ले जाओगे तो बताओ कितना मुनाफा होगा। यानी 40 पैसे का बैंगन 40 रुपये में मिलेगा।
7: अरे भैया, ये तो मुनाफे वाली बात है, तो क्या मैं इसमें आपकी सहभागिता ले सकता हूँ?
5: क्यों नहीं?
6: लेकिन भैया जितना खर्चा हुआ है उतने के बराबर ही खर्चा देना पड़ेगा।
7: चलो ठीक है, मेरा भी एक हिस्सा जोड़ लो।
8: अरे ये हुई ना बात, तुम भी समय के साथ साथ चलने लगे हो, इसका मतलब थे बुद्धू और बन गए महात्मा बुद्ध।
0: किसान भाइयों, स्वागत है आपका। तो पता चला ना आपको कि भाई निवेश तो एक बार बड़ा करना है।

ही पड़ेगा और लाभ बार बार होने की पूरी संभावना है। तो धन्यवाद संगम भैया कि आपने हमारे किसान भाइयों को और खास तौर की कल्लू को ये बताया कि भाई खेती एक बार करो, लाभ बार बार कैसे कमाओ, यही एक मंत्र है और इसी को अपनाना चाहिए। और अब इस बात को भाई और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपने विशेषज्ञ के पास, और विशेषज्ञ हमें आज बताएंगे कि भाई कौन कौन सी वो विधियां हैं जिससे कि हम नई नई खेती अपना सकते हैं। और संगम भैया, पॉली हाउस के बारे में आपने जो जानकारी बतवाई है वो तो बड़ी लाभकारी है कल्लू के लिए और उन सभी किसान भाइयों के लिए। तो भाई क्यों ना मैं भी किसान भाइयों आपको लिए चलूं संगम भैया की तरह अपने विशेषज्ञ के पास, ताकि वो हमें बता सकें कि भाई पॉली हाउस किस तरीके से फायदेमंद है।

0: डॉक्टर सुरेश कुमार मौर्य है और मैं सब्जी विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पे काम कर रहा हूँ।
1: जी जी।
0: सर्वप्रथम तो है कि पॉली हाउस बड़े काम की चीज है और खास तौर पे जो है बेमौसमी सब्जी उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसका अंग होता है कि इसमें आप 6 से लेकर 8 गुना तक ज्यादा उत्पादन इससे ले सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ दूसरी भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। जो भी आप सब्जी लेते हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप बिना सीजन के आप उगाते हैं तो हमारी जनसंख्या भी देखते हुए भी है कि हम जो है सब्जी उत्पादन अपना जो है जितना हो रहा है उससे हम बढ़ा देते हैं तो हमें बहुत सारी जो है सब्जियां जो है बिना मौसम में खाने को लिए मिलती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। देखिए पॉली हाउस कई तरह के होते हैं और जैसे आपका लो कास्ट है, मीडियम कास्ट है, हाई कास्ट है, तो हमारे किसान भाई किस तरह का पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं कास्ट उस पर निर्भर करता है। इसमें जो हम पॉली सीट यूज करते हैं उसमें भी बहुत तरह की पॉली सीट आती है कि एंटी डस्ट है, एंटी सल्फर है, एंटी फॉग है, तो ये लागत तो इस पर निर्भर करता है कि हमारे किसान भाई किस चीज का बनाते हैं। आप बांस का भी बना सकते हो साधारण पॉली हाउस, आप तो चाहे आप अब तो जीआई पाइप्स आती हैं उसका भी आप पॉली हाउस बना सकते हो। किस तरह का बनाते हैं ज्यादा करके किसान भाई जो हमारी हमारा प्रदेश है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हम लोग के लिए लाभकारी होता है। बनवाते समय इसमें एक ही बात का ध्यान रखते हैं कम से 60 से 70% इसमें वेंटिलेशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बीमारियों वगैरह का प्रकोप बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बनवाते समय कुछ चीजों का और ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह पॉली हाउस बिल्कुल आपका न हो जहाँ पे छाया आती हो या ऐसी जगह न हो जहाँ पे पता लगा बरसात के दिनों में पानी भर गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फेंस वगैरह से थोड़ा घिरा हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जानवर उसके पास कम से कम जा सके। पानी का स्रोत उसके आसपास होना चाहिए और बाजार से भी नजदीक हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सब चीजें हैं और एक महत्वपूर्ण है कि पॉली हाउस बना लेते हैं तो चूंकि हम ठंडी के दिनों में इसको इस्तेमाल करते हैं किसान भाई पॉली हाउस अगर बना ऐसा नहीं कि जब भी जो ये आता है और पॉली हाउस खोला और अंदर घुमाने के लिए चले गया, पॉली हाउस इसके लिए नहीं होता। पॉली हाउस को कम से कम खोला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बनाते समय एक और ध्यान रखिएगा कि दरवाजे जो हैं आपके बिल्कुल सामने की तरफ न खुले, थोड़ा सा घूम के आप दरवाजा बनाइए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट अंदर जाने जा नहीं पाते हैं, तो ये हमें काफी उससे लाभ रहता है। और जिन किसान भाइयों के जैसे पॉली हाउस बनवा चुके हैं 2-3 साल हो चुके हैं तो बरसात बीतने के बाद एक बार उसकी जो है पॉली सीट जो ऊपर होती है सर्फ से उसकी धुलाई जरूर कर दें क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन इसलिए कम होता है कि बरसात के बाद पन्नी हमारी थोड़ी गंदी हो जाती है, थोड़ी काई जैसी जमने लगती है, तो आप धुलाई कर दोगे तो उत्पादन जो है एक बार फिर से आपको दोबारा अच्छे इस प्रकार से मिलने लगेगा। और एक पॉली हाउस बनाते हैं तो आप पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाएं, कई सारे पॉली हाउस आपके लगे हुए हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी किसान भाई पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं बिना तकनीकी जानकारी लिए हुए न बनवाए तो बेहतर रहता है। एक बार आप जानकारी जरूर लें क्योंकि आपकी उपयोगिता क्या है, कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं, ये सब चीजों का जैसे उसमें मिस्ट सिस्टम लगता है, ड्रिप सिस्टम लगता है, तो हम सारी चीजों की जानकारी देते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और कितना बड़ा पॉली हाउस आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कम से कम आपका होता है कि 100 वर्ग मीटर का तो होना ही चाहिए, तो 100 से लेकर 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस अच्छा माना जाता है। इन सब चीजों को बनाए और लगाने का होता है तो बीमारियों के लिए भी अच्छा, तो सावधानी के लिए भी आपको जो दवाएं हैं और जो डोज है बाहर से थोड़ा अलग होता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या लगाए हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो आप किसी वैज्ञानिक से या संस्था से जुड़े रहें। बस ये है कि नहीं कि आप सब्जी का जैसे खेती से लगातार आय बढ़ाने का ये है कि खेत को हम कभी खाली ना छोड़ा जाए और पहले से सोच के डाइवर्सिफिकेशन की एक बात होती है कि ज्यादा तरह की फसलों का चुनाव किया जाए। बहुत सारी जैसे बीच में छोटा छोटा जैसे आपका गैप आता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोबिया की बात होती है कि आपका गेहूं कटेगा और उसमें आप लोबिया थोड़े समय में 60 दिन में लगा के ज्यादा से ज्यादा जो धान कटने के बाद आप लगा के ले सकते हैं, गेहूं और उसके लगने के पहले जो है आप उससे ले सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो आप थोड़े थोड़े समय में, जैसे मूली एक ऐसी सब्जी है आप इसको साल भर में 8 बार लगा सकते हैं, तो आपको लगता है कि 2 फसल के बीच में जो है हमारा थोड़ा गैप हो रहा है 25 दिन 40 दिन, तो आप ऐसी प्रजाति का चुनाव करिए, लगाइए और आमदनी ले लीजिए। बिल्कुल भी हमें जो अगर हम लगातार लगे रहे और सोच बनाए रखे, खासतौर पर उन सब्जियों को भी जैसे लगता है कि साल भर आमदनी की बात है तो कुछ किसान भाइयों को पॉली हाउस वगैरह भी बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि बिना मौसम में भी जो है सब्जी हम लगा के हम जो है ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। और लगाने सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाई जैसे है कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस सब्जी को लगाने जा रहे हो उसमें लागत कितनी आएगी और उसका बाजार में उसकी मांग है कि नहीं है। तो जहां भी आप लगाने चाहो ये नहीं कि हमने कह दिया कि कोई भी सब्जी आप साल भर उगाते रहिए, इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप सब्जी उत्पादन शुरू करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा बहुत कोई नई सब्जी आप जैसे एक्जोटिक आप लेट्यूस लगाना चाहते हैं, सेल्ली लगाना चाहते हैं, इस तरह की सब्जियों की अगर खेती करना चाहते हैं तो एक बार बात जरूर कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जैसे हमारे दिल्ली है वहां आपको मूल्य बहुत ज्यादा उसका मिलेगा। तो इस तरह की चीजों में लगने से पहले एक बार बाजार को देख ले, वैज्ञानिक सलाह जरूर ले ले। और मुझे लगता है कि ऐसी सब्जी है जैसे टमाटर तो पूरे साल भर, और किसान भाई देख रहे हैं कि हर एक सब्जी पूरे साल भर मिल रही है, मिल कहां से रही, जब कोई किसान उगा रहा तभी तो मिल रही है आपको, तो दूसरा उगा सकता है हमारे देश के दूसरे भाग में उगा सकता है तो हम क्यों नहीं उगा सकते। तो पूरा है कि सब्जी से अगर व्यवसाय में लगा जाए तो हम पूरे साल भर जो है उसमें लगे रहेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हमें आधुनिकरण करना पड़ेगा कि हमें जो है पाली हाउस है, मल्च है, ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, कुछ नई चीजें जो आई है, नई प्रजातियां हैं, इनका हम समावेश करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि साल भर जो है हमारा जो परिवार, हम खुद भी अच्छी सब्जी खाएंगे, दूसरे को भी अच्छा खिलाएंगे। तो ये जैसा कि है कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो सब मिल के चले तो सभी अच्छा ही अच्छा।
1: तो किसान भाइयों एक बार फिर से स्वागत है आपका कंकरीट के जंगल में, और मैं विकास स्वागत करता हूँ 14वें अंक में, यानी आज है हमारा 14वां अंक। किसान भाइयों ध्यान से आप इस जानकारी को सुनिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम कंकरीट के जंगल की श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं और इस कार्यक्रम से आपको कई खेती के नए आयामों के बारे में अवश्य ही पता चला होगा। भूमि कितनी आवश्यक है, उसका रखरखाव कितना आवश्यक है, और भूमि हमारे भविष्य को किस प्रकार से संजो के रखती है, इन सभी बातों में हमने किया है गौर अभी तक। तो आइए आपको लिए चलता हूँ और बताता हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं, यानी छोटी पर मोटी बातें,
2: छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
1: किसान भाइयों आज के कार्यक्रम में आपसे बात करके स्पष्ट तौर पर पता चला कि किसान भाई डरते हैं अधिक लागत लगाने से। भाई ये एक बार का सौदा है, लगाना फायदेमंद ही साबित होगा, और यही बात तो संगम भैया ने भी बातों बातों में हमें बताई। बातों बातों में सारी बातों को समझ के विशेषज्ञ ने भी हमें बताया कि पॉली हाउस के क्या लाभ हो सकते हैं और किन लाभों को लेते हुए आप एक बार की गई मेहनत से कई वर्षों तक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये है हमारा आज का विषय जो कि है निवेश एक बार लाभ बारंबार।
2: छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
1: तो किसान भाइयों अब समय आ चला है कि आपने कितना दिया है कार्यक्रम में ध्यान, इसीलिए परखूं आपका ज्ञान।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना और इसमें जाना कि किस तरीके से ग्रीन हाउस के साथ हम खेती कर सकते हैं, ये हमारे किसान साथियों के लिए एक नई तकनीकी है। इस तरीके की तकनीकी अपनाकर अपनी खेती में मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ के किसान साथियों को सख्त पानी की सकता रहती है, क्योंकि अगर फसल वो बोते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी उनको देना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करें किसान, एक विकल्प हमने उनको दिया है कि ग्रीन हाउस की खेती करना चाहिए और किस तरीके से उससे मुनाफा कमाना चाहिए। आप नर्सरी भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पौधे जो बिकने लायक रहते हैं, चाहे वो फूल के हो चाहे वो सब्जियों के हो, उनके हम नर्सरी लगाकर तैयार कर सकते हैं ग्रीन हाउस के माध्यम से। तो ऐसे हम तकनीकी का उपयोग कर अपनी आजीविका को हम बढ़ा सकते हैं। यही विकल्प है, छोटे छोटे विकल्प है जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद आवश्यक रहते हैं, और आवश्यकता के साथ साथ हमारे किसान साथ साथी अब सोच रहे होंगे कि हम कैसे करें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनसे जाकर संपर्क करना चाहिए, और केबीके आपके नजदीक है वहां पर जाकर वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहिए और इस तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण लेना चाहिए। कुछ तरीके से झाबुआ जिले में इस तकनीकी का हम इस्तेमाल करके अपनी फसल उत्पादन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी तकनीकी है जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, और महत्वपूर्ण के साथ साथ हमारे किसान साथियों को अब सोचने की आवश्यकता

महत्वपूर्ण रहते हैं। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं। तो आपके आरजे मनीष लेते हैं जाने की इजाजत और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। अब हम बात करते हैं कि ग्रीष्मकालीन कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, खासतौर पर उन पथरीली इलाकों में हम किस तरीके से अपनी फसलों को और फल को लगा सकते हैं। जैसे कि कपास पर हमने बातचीत की थी कि हमारे किसान साथी कपास की खेती चूंकि झाबुआ में होती भी है तो किस तरीके से वो लगा सकते, क्या सावधानी होनी चाहिए, इस बात पर भी हमने बताया था। खरबूजा की अगर बात करें तो खरबूजा एक फल है, यह पकने पर हरे से पीले रंग हो जाते हैं, हालांकि कई रंगों में उपलब्ध है। मूल रूप से इसके फल लंबी लताओं में लगते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में खरबूजा एक महत्वपूर्ण फसल है। खरबूजे की खेती मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश के गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। हमारे देश में उत्तर पश्चिमी में खरबूजे की खेती व्यापक रूप से की जाती है। इसकी खेती नदियों के किनारे मुख्य रूप से होती है। खरबूजा एक स्वादिष्ट फल है जो गर्मियों में तरावट देता है और इसके बीजों का उपयोग मिठाई को सजाने के लिए किया जाता है, तो ये भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। तरबूज की बात करें, तरबूज तो होता ही है, तरबूज ग्रीष्म ऋतु का फल है। यह बाहर के से हरे रंग का होता है परंतु अंदर ये लाल रंग और पानी से भरपूर और मीठे होते हैं। इनकी फसल आमतौर पर गर्मी के मौसम में तैयार की जाती है। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो इन्हें गर्मी में खाना अच्छा माना जाता है क्योंकि यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार तरबूज रक्तचाप को संतुलित रखता है और कई बीमारियों को दूर भी करता है। हिंदी की उपभाषाओं में इसे मतीरा राजस्थान के कुछ भागों में कहा जाता है और हरवाना जो हरियाणा के कुछ भागों में इसको हदवाना के नाम से जाना जाता है। ककड़ी तो चूंकि आप जानते हैं कि ककड़ी भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। ककड़ी की उत्पत्ति भारत से हुई है। इसकी खेती रीति और बिल्कुल तुरई के समान होती है, केवल इसके बोने का समय में अंतर है। यदि पूर्वी जिलों में हो तो यहाँ पर शीत ऋतु अधिक कड़ी नहीं होती है तो अक्टूबर के मध्य का बीज बोए जा सकते हैं, नहीं तो जनवरी में बोना चाहिए। इसे स्थानों जहां पर सर्दी अधिक पड़ती है इसे फरवरी और मार्च के महीनों में लगाना चाहिए। इसकी फसल बलई दुमट भूमि में अच्छी पैदावार होती है। इस फसल की सिंचाई सप्ताह में दो बार करनी चाहिए। ककड़ी में सबसे अच्छी सुगंध गर्म शुष्क जलवायु में आती है और इसमें दो मुख्य जातियां होती हैं। एक में हल्के रंग हरे रंग का फल होते हैं और दूसरे में गहरे हरे रंग का फल देती हैं। इसमें पहली तो लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ग्राहकों की पसंद के अनुसार फलों की चुनाई तरुण अवस्था और उनके उसके बाद की जाती है। इसकी उपज कई एकड़ों में की जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को बेहद जरूरी समझने की बातचीत है क्योंकि मौसम भी इस तरीके का रहता है कि आप मौसम आधारित खेतियों को करिएगा, किस मौसम में क्या बोना चाहिए उस पर हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम का से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं साथियों। और चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: तड़प मारे थोड़ा सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

आइए दोस्तों आपको मिलवाते हैं नवीन तिवारी जी से। पिता के अचानक निधन के बाद जब परिवार के 14 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके सर पर आ पड़ी तो उसने परिवार चलाने के लिए एक किराने की और पीसीओ की दुकान खोली। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कभी कि एक दिन ये युवा 15 करोड़ की कंपनी का मालिक बन जाएगा और दूसरों को तरह तरह की कंपनियों में रोजगार दिलवाएगा। ये उद्यमी हैं नवीन तिवारी, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर महज साधारण सी शुरुआत करके साझेदारी में स्क्रैम्बल नाम की कंपनी खोल दी। वैचारिक दृढ़ता और शानदार सोच का अटूट समर्पण की शक्ति के साथ खड़ा स्क्रैम्बल आज लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है। एक छोटे से किराना स्टोर से एक संपन्न उद्यमी तक नवीन की यात्रा महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने कई तरह के अनुभव हासिल किए, जिनमें एक सख्त बॉस से निपटने से लेकर कई नौकरियों में पदोन्नति पाने के उतार चढ़ाव वाले दौर शामिल हैं। बाद में नवीन ने अपने करियर के रुख में थोड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने माइकल पेज और नेटिव नामक एक HR कंपनी में काम किया। इस दौरान उनके व्यक्तिगत जीवन में भी काफी उथल पुथल रही। पहली पत्नी से तलाक हो जाने के बाद उन्होंने नेटिव की सहकर्मी से दूसरा विवाह किया। वर्ष 2021 में जब उन्होंने स्क्रैम्बल की शुरुआत की तो निवेशकों की रुचि कम होने के कारण उनकी पत्नी के घरवालों ने शुरुआती पूंजी

0: टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई और पहले ही वर्ष में कंपनी ने 4.25 करोड़ का कारोबार कर डाला, जो दूसरे साल में दोगुना हो गया और तीसरे साल तक पहुंचते पहुंचते तो वो 15 करोड़ का पहुंच चुका था। फिलहाल उनकी टीम में 56 कर्मचारी हैं। कंपनी ने अब तक 1000 से ज्यादा ग्राहक कंपनियों के साथ काम किया है। इस क्रम्बल ने मात्र 3 साल में ही 15 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। ये व्यावसायिक विकास उनके व्यवसाय मॉडल की प्रभावशीलता और उनकी टीम के समर्पण को रेखांकित करता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहक कंपनियों के साथ मजबूत संबंध बनाकर स्क्रैम्बल ने खुद को रोजगार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, मिलवाते हैं पश्ताना दुर्रानी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीते हुए कुछ दिनों पहले कातार की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के भविष्य पर एक सम्मेलन हुआ था। इस जलसे को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने काबुल के निजाम से जब ये कहा कि अपने देश में लड़कियों की तालीम और महिलाओं की नौकरी करने पर उसने जो अपमानजनक पाबंदी लगा रखी है उसे वो फौरन वापस ले और स्कूल की कक्षाओं से लेकर उन तमाम ओहदों पर औरतों की भागीदारी सुनिश्चित करें जहां से निर्णायक फैसले होते हैं, तो पश्ताना दुर्रानी की मुहिम की याद हो आई। अपनी जान पर खेलकर वो अफगान लड़कियों तक ज्ञान की रोशनी बिखेर रही हैं। अफगानिस्तान के कांधार इलाके के जलमई दुर्रानी एक तरक्की पसंद कबायली नेता थे जो लड़कियों की तालीम की बढ़ चढ़कर हिमायत करते थे। जाहिर है कट्टर पंथियों को उनकी ये बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें कई बार खामोश रहने को कहा गया, लेकिन जलमई दुर्रानी लगातार मुखर रहे, बोलते रहे। ऐसे में जब मुल्क गृह युद्ध में चल रहा हो और लंबा खींचा ही जा रहा हो और कांधार इलाके पर तालिबान का पूरा नियंत्रण हो गया हो, तो दुर्रानी परिवार के सदस्यों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो भागकर पाकिस्तान जा पहुंचे, जहां क्वेटा में उन सबको शरण मिली। करीब 27 साल पहले क्वेटा के ही एक शरणार्थी शिविर में पश्ताना का जन्म हुआ। उनके पिता अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह की जगहों में इन खानाबदोश जिंदगियों को अब इज्जत का मुकाम सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मिल सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी नई नस्लों की शिक्षा को लेकर वो पहले से कहीं ज्यादा संजीदा हो उठे। उन्होंने अपने अस्थाई घर को स्कूल में बदल दिया और अपनी पत्नी और परिवार की दूसरी पढ़ी लिखी औरतों को उन शिविरों की बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब इसी तरह के माहौल में पश्ताना पली बढ़ी। होश संभाला तो उन्होंने देखा कि उनकी मां और चाची किस तरह हमसाया घरों के लोगों को कायल किया करती कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेज दें। पश्ताना ने पाकिस्तान में ही हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी कि आगे की तालीम वो अपने मुल्क की ही किसी यूनिवर्सिटी से करें। तब तक अफगानिस्तान में निजाम भी बदल चुके थे और चारों तरफ इस बदलाव की चर्चा भी थी। कई औरतें न सिर्फ सरकारी मुलाजमात और सियासत में लौट आई थीं, बल्कि अपना कारोबार भी चलाने लगी थीं। साल 2013 की बात है, दुर्रानी परिवार ने वतन वापसी का फैसला लिया। पश्ताना तब सिर्फ 16 साल की थी। अपने पुरखों की माटी को चूमने की खुशी ही अनूठी होती है। पूरा दुर्रानी खानदान बहुत खुश था, लेकिन कंधार लौटने की पहली ही रात जिस सच से पश्ताना का सामना हुआ उसने उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। खानदान की लड़कियां जब मिली तो उन पर यह हकीकत खुली कि उनके पूरे जिले में जहां 400 से भी ज्यादा परिवार रहते हैं एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास भी हुआ कि लड़कियों की पढ़ाई तो सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। एक दिन खानदान की ही एक छोटी बहन आई और हसरत भरी निगाहों से पश्ताना को देखते हुए कहने लगी, बाजी मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूं। पश्ताना शिक्षित थी, उनके पास अपना लैपटॉप था। वो कॉन्फ्रेंस के लिए काबुल जाया करती और सबसे बढ़कर उन्हें पिता का पूरा साथ हासिल था। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जब पश्ताना काबुल जा रही थी तब उसी बहन ने हुकूमत के नाम एक खत दिया जिसमें ये करुण गुजारिश थी कि उनके जिले में एक लड़कियों का स्कूल खोला जाए ताकि वो भी पढ़ सके। सरकार की तरफ से ना कोई जवाब आना था ना आया, लेकिन पश्ताना उस हसरत के आगे पसीज उठी। आखिरकार
उन्होंने उस बच्ची के पाठ्यक्रम की सामग्री और सहायक वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड किए और उसे पढ़ाना शुरू किया। बच्ची इस लगन से पढ़ती रही कि जल्द ही वो मोड़ आया जब उसे कंधार शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। इस घटना ने पश्ताना को प्रेरित किया कि उन सभी तमाम लड़कियों को वो डिजिटली पढ़ा सकती हैं जिनकी पहुंच में कोई स्कूल नहीं। इसी नेक इरादे से उन्होंने साल 2018 में लर्न अफगानिस्तान के नाम से एक निशुल्क ऑनलाइन स्कूल खोल दिया, अफगानिस्तान का पहला डिजिटल स्कूल नेटवर्क। इसके जरिए वो अब तक कंधार के 7,000 से ज्यादा लड़के लड़कियों को शिक्षित कर चुकी हैं और 80 शिक्षकों को भी डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। मगर पश्ताना का ये काम कभी निरापद नहीं रहा, क्योंकि कंधार से तालिबान कभी खत्म ही नहीं हुए थे। और फिर जब वो 21 साल की थीं, उनके पिता का इंतकाल हो गया, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गई। साल 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और तब स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बताया कि उनका कत्ल किया जा सकता है। पश्ताना ने अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला ले लिया और वो चली गई। इन दिनों वो वहीं से अपने मिशन में जुटी हैं। साल 2021 में बीबीसी की तरह प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ने भी उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों में गिना है। औरतों को अपने हक हुकूक के लिए हमेशा ही भारी संघर्ष करना पड़ता है। आज से 250 साल पहले भारत में सावित्री भाई फूले के साथ भी तो क्या क्या हुआ, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। मगर उन्होंने उस वक्त हमारे देश में स्त्री शिक्षा की जो ज्योत जलाई, उसे आज तक पूरा हिंदुस्तान रोशन है। उम्मीद है अफगानिस्तान की आने वाली नस्लें भी पश्ताना दुर्रानी को उसी अदब से याद करेंगी। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से

की 3 बार प्रदक्षिणा की यानी कि चक्कर लगाया और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी, ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा, ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई। वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया। दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं। किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था। अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा? राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका? मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान। जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब? राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों, खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दोस्तों, किसी भी काम को करने का कोई एक तरीका नहीं होता। कई तरीके हो सकते हैं, घर सजाने का, खाना बनाने का, या कोई सामान बेचने का। कोई एक सबसे बढ़िया तरीका नहीं है, बहुत तरीके हो सकते हैं। आप जितने ज्यादा रचनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, उतने तरीके आपके पास होंगे। हम अपने दिमाग को बंद रखेंगे तो नए विचार कहां से आएंगे उसमें। तो बड़े बूढ़े कहते भी है ना, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखो। रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है पारंपरिक सोच। यानी कि अगर हम क्रिएटिव सोचना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, कुछ अलग हटके सोचना चाहते हैं, तो हमारी पुरानी सोच उसको रोकती है, हमें सोचने नहीं देती। इसलिए कई बार पुरानी सोच को हमें छोड़ना होगा। नए विचारों का स्वागत कीजिए, उनसे नफरत ना कीजिए। प्रयोगशील बनिए, यानी कि कुछ नया करके देखिए तो सही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो होंगे। और फेल हमेशा पास होने की पहली सीढ़ी होती है। याद कीजिए ना, बच्चा जब चलना शुरू करता है तो पहली बार वो गिरता है, फेल होता है, तब वो खड़ा होता है। हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप कितनी ही सुंदर कृति बना लें, उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तीन नियम जिंदगी को खूबसूरती से जीने के। नियम नंबर एक, आपका अपना दुख, दर्द या तकलीफ उतनी ही सच्ची है जितनी दूसरों की। हो सकता है कि कोई एक चीज किसी दूसरे के लिए आसान हो, लेकिन इससे आपका दर्द कम नहीं हो जाता। अपने दर्द के बारे में बात करना, उसको ठीक करना आपका हक है। आपका दर्द मायने रखता है, आपका अनुभव मायने रखता है, आपका उबर कर आगे बढ़ना भी जायज है। नियम नंबर दो, कोई एक दिन ऐसा होता है जब दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, होता है ना ऐसा। मुश्किल समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है छोड़ना। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। शांति की सांस लेते हुए हम अपने भीतर के गुबार को छोड़ने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। हम छोड़ दें उस विचार को जो भीतर अवसाद भरे जा रहा है। जाने देना यानी जो हुआ उसे मानते हुए आगे बढ़ जाना, भले ही उसके लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े, लेकिन उसे छोड़ना ही होगा। नियम नंबर तीन, जिंदगी के संघर्ष समझ नहीं आते, लेकिन उसके मायने होते तो हैं। जब कभी हम अपने बीते कठिन दिनों को देखते हैं, उस वक्त ये समझ में आता है कि उनके कारण ही हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। तब हम अपने संघर्षों को सलाम करते हैं। चुनौतियां केवल तोड़ती नहीं है, हमें मजबूत भी बनाती हैं। निरंतर किए गए प्रयास और संघर्ष से ही ताकत और तरक्की मिलती तो है। फिर मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, इस स्नेह की एक लघु कथा सुनाता हूं। एक छोटी सी कहानी जो सुकेश साहनी साहब ने लिखी है, धुएं की दीवार। बंटवारे से पहले इन दोनों भाइयों अमीचंद और दुलीचंद में बहुत प्यार था, उनके परिवार में भी। आज बंटवारे के बाद जब उनके मकान के बीच में एक दीवार खींच दी गई, तब अमीचंद शीशे के सामने खड़ा होकर पगड़ी बांध रहा था। बंटवारे के बाद वो पहली बार बाजार जा रहा था, लेकिन उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। पहले हर महीने वो बेले वाला के हाट में बाजार में जाकर सबके लिए जरूरी सामान लाया करता था। दुलीचंद और उसके बच्चों के लिए भी लाता था। उसने खिड़की के बाहर एक उदास सी निगाह डाली। अपने मकान की दो हिस्सों में बांटती हुई दीवार उसके दिल को चीरती चली गई। बंटवारे वाले दिन से उसके और छोटे भाई दुलीचंद के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद थी। बाहर दुलीचंद श्यामा गाय को धोने की तैयारी कर रहा था। बंटवारे में गाय उसके हिस्से में आई थी। अभी अमीचंद की नजर अपनी बेटी पर पड़ गई। वो हाथ में बड़ा सा गिलास लिए चुपके से अपने चाचा की ओर बढ़ रही थी। वो चिल्लाकर बेटी को रोकना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दुलीचंद ने मुस्कुराकर अपनी भतीजी की तरफ देखा। जवाब में वो भी धीरे से हंस दी। दुलीचंद

लीजिए दोस्तों, एक और बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त ये थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो ये गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए थी। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया था, मिठाई और अलग अलग तरह के पकवान भी बनाए थे। पहले सभी दावत का आनंद लेते थे, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता था। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिसमें राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए इस चक्कर में। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती ही होती है, ये राजकुमारी तो पागल हो गई है, ये केवल हमको सबको पिटवाने का मजा लूटना चाहती है और कुछ नहीं। ये नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लग गया। उसने कहा, अरे डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती तक नहीं आती। अब ये सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। और राजा ने उससे पूछा, अच्छा जी, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुना दो। हलवाई बोला, राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं तो आप लोगों के बराबर नहीं हूं, और स्वयंवर में तो सिर्फ राजाओं को ही बुलाया गया है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? पास खड़ी हुई राजकुमारी बोल पड़ी, अच्छा जी, चलो ठीक है, अगर तुमने गिनती सुना दी तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और अगर नहीं सुना पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, कोड़े नहीं। सब ये देखते ही रह गए कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कह दिया गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। दोस्तों गौर कीजिएगा, अब यहां एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोक, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, सात वार, आठ खंड,

9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सब लोग हक्के पक्के रह गए। राजकुमारी ने हलवाई से शादी की। दोस्तों, इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। यहां शिक्षा से बड़ा तजर्बा निकला। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और ब्राइट कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जब सपना जिद बन जाए, एक कहानी जिसने दुनिया बदल दी। स्वागत है आपका दोस्तों एक और नई कहानी में। आज की कहानी सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, आज की कहानी है जुनून की, जिद की, और एक ऐसे इंसान की जिसे सबने मना किया लेकिन उसने खुद को कभी मना नहीं किया। चलिए आपको लेके चलते हैं थोड़ा पीछे। एक आदमी था, सपना था फिल्म बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम, उसे फिल्म मेकिंग आती नहीं थी, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, स्क्रिप्ट वो भी नहीं, बस कुछ स्केचेस, कुछ ड्राइंग्स, मतलब आज की लैंग्वेज में बोले तो विजन तो था लेकिन सिस्टम नहीं था। अब आप सोचिए, आजकल भी लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है तो काम कैसे मिलेगा, और यहां बिना एक्सपीरियंस के एक बंदा फिल्म बनाने निकला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने डिसाइड किया इस फिल्म में ना गाने होंगे, ना फाइट्स होंगी, ना रोमांस होगा। अब इंडियन सिनेमा का बेसिक फॉर्मूला क्या है हम सब जानते हैं, थोड़ा प्यार, थोड़ी मार, थोड़ा डांस। यहां ये सब कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये आज का रिस्क नहीं था, ये उस जमाने का रिस्क था जब लोग एक्सपेरिमेंट से डरते थे। और फिर कास्टिंग की बारी आई, आप एक्सपेक्ट करेंगे बिग स्टार्स, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, एमेच्योर एक्टर्स लिए, कुछ थिएटर वाले और एक फिल्म लीड, सब रेडी हो गए। वो उनसे मिला पड़ोसी की छत पर। जी हाँ, बंदा कैजुअली छत पर दिखा और ये फिल्म मेकर बोला ये परफेक्ट है। अगर आज होता तो लोग बोलते इंस्टाग्राम हैंडल क्या है इसका, कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ आंखों से टैलेंट पहचाना जाता था। और एक रूल, सेट पर कोई मेकअप नहीं करेगा। अब एक्टर्स सोच रहे होंगे हम आए क्यों हैं, लेकिन उसका विजन क्लियर था, रियल लोग, रियल इमोशंस, रियल कहानी। और शूटिंग स्टूडियो में नहीं, आउटडोर रियल लोकेशंस पर। उस जमाने में ये ऑलमोस्ट एक रिबेलियन जैसा था, एक रेवोल्यूशन जैसा था। और सिनेमाटोग्राफर कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं, 21 साल का एक स्टिल फोटोग्राफर जिसे फिल्म कैमरा चलाना भी नहीं आता था। तो दोस्तों अब आप ऑनेस्टली बताओ, अगर आप उस टाइम पे होते तो क्या बोलते, ये तो पक्का फ्लॉप है, यही ना? और वही सबने बोला ये डिजास्टर है, ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, ये सपना टूट जाएगा। लेकिन सपना जब जिद बन जाए ना, तो दुनिया की आवाज धीमी पड़ जाती है दोस्तों। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पैसे। कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई फंडिंग नहीं, लेकिन सपना, सपना तो जिंदा है। तो उसने क्या किया, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया और शूटिंग शुरू की। थोड़ा शूट हुआ, पैसे खत्म, अब क्या करते, छोड़ दो। नहीं, उसने नहीं छोड़ा, अपना ग्रामोफोन रिकॉर्ड कलेक्शन बेच दिया। सोचिए आपकी फेवरेट चीजें, आपका पैशन,
सब बेचकर सिर्फ एक सपने के लिए आप चलते जा रहे हैं, फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म। अब तो बस हो गया ना, आपको यही लगेगा, लेकिन नहीं, यहां कहानी और फिल्मी हो जाती है। उसने अपनी वाइफ के गहने तक गिरवी रख दिए। ये सिर्फ लाइफ स्ट्रगल नहीं है दोस्तों, ये सैक्रिफाइस है। और ये सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का सपना बन चुका था। फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म, और इस बार सब रुक गया। एक साल तक कुछ नहीं, कोई होप नहीं, कोई पैसा नहीं, बस एक अधूरी फिल्म। और एक आदमी जो शायद थोड़ा थक गया था, लेकिन रुका फिर भी नहीं। जिंदगी का सबसे टफ फेज कौन सा होता है आप जानते हैं? आप सब सोच रहे होंगे जब आप फेल हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, जब आप वेट करते रहते हो और फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता। वो एक साल सिर्फ इंतजार था, और फिर एक मिरेकल हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग दी, लेकिन ट्विस्ट सुनो, उन्हें लगा ये फिल्म नहीं एक डॉक्यूमेंट्री है रूरल डेवलपमेंट पर, क्योंकि टाइटल ऐसा लग रहा था। दोस्तों, कभी कभी लोग गलत समझकर भी सही काम कर ही देते हैं, और इस बार उस गलत समझ ने एक मास्टरपीस को जन्म दिया। फिल्म कंप्लीट हुई, 3 साल लगे, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, डाउट, सब कुछ था। और फिर रिलीज हुई पाथेर पंचाली। इस फिल्म के क्रिएटर, खैर नाम की जरूरत नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं, द ग्रेट सत्यजीत रे। दोस्तों, रिलीज के बाद क्या हुआ? लोग चुप हो गए, क्रिटिक्स हैरान हो गए, और दुनिया ने कहा ये जीनियस है। जो लोग बोल रहे थे डिजास्टर है, वही लोग बोलने लगे मास्टरपीस है। दोस्तों, डिफरेंस क्या था? फिल्म नहीं बदली, लोगों की नजर बदल गई। और आज की सबसे बड़ी बात, अगर सत्यजीत रे ने हार मान ली होती ना, तो क्या होता? ना ये फिल्म होती, ना ये कहानी होती, और ना ही दुनिया को पता चलता कि असली सिनेमा क्या होता है। दोस्तों, हर किसी के पास एक पाथेर पंचाली होती है, एक सपना जो थोड़ा अलग होता है, जिसे लोग समझते नहीं, जिसे लोग रिस्की भी कहते हैं। आजकल हम सब क्या करते हैं? आइडिया आया, गूगल किया, इज दिस अ गुड आइडिया? दो लोग बोलते हैं नो, और हम बोलते हैं छोड़ो यार, कौन चलेगा इस पे आगे। अगर रे सर भी गूगल करते तो क्या होता? आंसर आता हाईली रिस्की, नॉट रिकमेंडेड, और कहानी वहीं खत्म। लेकिन आज की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि सपने परफेक्ट नहीं होते, कंडीशंस भी परफेक्ट नहीं होती, और लोग भी कई बार आपको सपोर्ट नहीं करते। सब जगह से नॉन रेकमेंडेशन का ही कमेंट आता है। लेकिन अगर आप रुकते नहीं, अगर आप कन्विंस्ड हैं, तो कहानी बन जाती है, मिसालें बन जाती हैं, और हिस्ट्री क्रिएट होती है। इसी के साथ ये आज की इंस्पायरिंग फिल्मी और यादों से जुड़ी कहानी यहीं समाप्त करते हैं। सपने देखते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, जिद अगर सच्ची हो तो कहानी दुनिया लिखती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: हर चीज का जुगाड़ एक्सपर्ट। ये बंदा बोलता है तू टेंशन मत ले, जुगाड़ हो जाएगा। और लास्ट में जुगाड़ ये होता है, चल कल देखते हैं।

एक आवाज जो पर्दे के पीछे थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। आज हम आवाजों की कहानी सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक आवाज है और फिर एक और आवाज है और फिर एक तीसरी आवाज है। अब मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गाना हम सुनते हैं उसके पीछे कितनी कहानियां होती हैं? क्योंकि दोस्तों, हर सुर के पीछे एक स्ट्रगल होता है, एक कहानी होती है, एक इंसान होता है। आज की कहानी भी ऐसी एक आवाज से शुरू होती है। एक ऐसा वक्त था जब फिल्म्स में एक्टर्स खुद गाते थे। जी हाँ, ना कोई प्लेबैक सिंगर, ना कोई रिकॉर्डिंग मैजिक। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही गा रहा है, और उस जमाने में एक नाम था, अशोक कुमार। उन्होंने कई गाने गाए और फिर उन्हीं गानों को एक और आवाज ने अमर कर दिया। कौन? द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स, किशोर कुमार। उनकी आवाज, उनका अंदाज आज भी दिल को छू जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी ना अशोक कुमार की है ना किशोर कुमार की। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने इन आवाजों को जन्म दिया। एक कंपोजर, एक क्रिएटर, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक पाइनियर। उनका नाम था सरस्वती देवी, लेकिन ये नाम उन्हें दिया गया था। उनका असली नाम था खुर्शीद मिनोचर होमजी। और दोस्तों, यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक डिसीजन जो बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें हायर किया गया था बॉम्बे टॉकीज ने, उस जमाने का एक बहुत बड़ा स्टूडियो। एक सपना, एक मौका। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी, और सिर्फ औरत नहीं, एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में आना एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता था। बोर्ड मेंबर्स ने कहा, ये ठीक नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, ये काम उनके लिए नहीं है। दोस्तों सोचिए, टैलेंट होने के बाद भी सिर्फ इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि आप एक औरत हो और आपका सरनेम मैच नहीं कर रहा। लेकिन हर कहानी में एक इंसान होता है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है, और यहां भी वही हुआ। यहां वो इंसान थे हिमांशु रॉय। उन्होंने कहा, नहीं, यही हायर होंगी। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और क्लियर विजन, लेकिन एक कंडीशन के साथ, नाम बदलना पड़ेगा। और खुर्शीद बन गई सरस्वती देवी। दोस्तों, ये सिर्फ नाम चेंज नहीं था, ये एक आइडेंटिटी का कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन कभी कभी अंदर का जुनून बाहर के नाम से बहुत बड़ा होता है, और इस तरह सरस्वती देवी बनी इंडिया की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर। दोस्तों, आज जब हम फीमेल कंपोजर्स की बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल बात लगती है, लेकिन उस वक्त ये रेवोल्यूशन था। कुछ सालों बाद एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। लीड एक्ट्रेस बीमार थी, उन्हें जोर की खांसी थी और वो गाना नहीं गा पा रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म रुक नहीं सकती थी, टाइम नहीं है। सोल्यूशन, क्या करें क्या करें क्या करें? दोस्तों, यहीं से आता है एक ऐसा मोमेंट जिसने सिनेमा की हिस्ट्री बदल दी। हिमांशु राय ने कहा, एक काम करते हैं, गाना कोई और गाएगा, एक्ट्रेस सिर्फ लिप सिंक करेगी। और गाएगा कौन? सरस्वती देवी। पर्दे के पीछे से वो गाती रही और स्टेज पर एक्ट्रेस उस आवाज को जीती रही। दोस्तों, ये था इंडिया का पहला प्लेबैक सिंगिंग मोमेंट। सोचिए, आज हम जितने भी गाने सुनते हैं, लता मंगेशकर जी से लेकर किशोर कुमार जी से लेकर रफी साहब से लेकर अरिजीत सिंह तक, सबकी फाउंडेशन उस एक मोमेंट ने डिफाइन की। कितनी अजीब बात है ना, आवाज उनकी लेकिन चेहरा किसी और का, टैलेंट उनका लेकिन क्रेडिट हमेशा सामने वाले को मिलता। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने बस क्रिएट करना कंटिन्यू रखा।
और दोस्तों, यही असली ग्रेटनेस होती है। जिंदगी में कई लोग होते हैं जो फ्रंट में नहीं होते, स्पॉटलाइट में भी नहीं होते, लेकिन उनके बिना कहानी अधूरी होती है। जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक राइटर, एक टेक्नीशियन और कभी कभी एक आवाज जो पर्दे के पीछे होती है। आजकल क्या होता है, रील बनानी है तो पहले कैमरा सेट, फिर लाइटिंग, फिर फिल्टर, फिर कैप्शन।